100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात श्रोताओं, 100.7 मेगाहर्ट्ज पर मैं विनय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति दिन का शुभारंभ करते हैं भक्ति भाव से सुशोभित कार्यक्रम पुष्पांजलि से। एक दंताय शुद्ध गाय सुमुखाय नमो नमः, प्रपन्न जन पालाय प्रणतार्ति विनाशिने। हम माँ पार्वती के पुत्र जिनके एक दांत और सुंदर मुख हैं, जो शरणागत भक्तजनों के रक्षक और प्रणतजनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप गणपति को बारंबार प्रणाम है।

सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सच्चरित तथा सदाचारी होना पहली शर्त होती है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव नहीं है। हमें यह दुर्लभ मानव जीवन किसी भी कीमत पर निरर्थक और उद्देश्यहीन नहीं जाने देना चाहिए। लोक मंगल की कामना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। प्रभु वंदन में लीन हो जाते हैं इस भजन के माध्यम से।

जिनका जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और करुणा का मार्ग दिखाता है। ऐसे मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक प्रभु श्री राम को हमारा नमन है।

जहां विश्वास होता है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और जहां भक्ति होती है वहां ईश्वर खुद साथ चलने लगते हैं। परम भक्त महाबली की जय।

हे महादेव, हाथ पैर वाणी मन या कर्म से जो भी भूल हो गई हो, जानी अनजानी सभी त्रुटियों को क्षमा करें। आपकी कृपा से हमारे जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता का वास बना रहे। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे करुणामय शंभू, आपको बारंबार प्रणाम है।

जिस पर होती है माता रानी की कृपा अपार, उनके जीवन में सदैव खिलते हैं खुशियों के फूल हजार। जय हो माता रानी की।

सुख समृद्धि एवं शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सचरित्र और सदाचारी होना पहली शर्त है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव नहीं है। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो, इन्हीं वचनों के साथ

सुबह के 7 बज गए हैं। हमारे सभी लिसनर्स का हम करते हैं तहे दिल से वेलकम हमारे इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में।

एक नई सुबह, नई ताजगी, नए एहसास के साथ हो चुकी है एक खूबसूरत दिन की शुरुआत। जी हाँ, हर रोज जिस शो के साथ होती है हमारी और आपकी ये प्यारी सी मुलाकात, उसका नाम है गुड मॉर्निंग कानपुर। और इस प्रोग्राम को लेकर मैं आरजे पूर्णिमा हूँ आज आपके साथ।

जी हाँ, और हमारे इस शो के साथ आप एंजॉय करने वाले हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 एफएम के साथ। जी हाँ, और इसके लिए बस आपको ट्यून इन रहना है हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं आज प्रोग्राम्स, जो कौन कौन से प्रोग्राम्स आप आज एंजॉय करने वाले हैं। आठ बजकर 30 मिनट पर पुराने फिल्मी सॉन्ग्स को सुनेंगे आप सुरों की पुरानी महफिल इस प्रोग्राम के साथ। मई के महीने में किन फिल्मों ने किया आपके दिल पर राज, ये राज खोलेंगे हम ठीक 9 बजे प्रोग्राम रस बहार में। जी हाँ, मई की महफिल, फिल्मों के सुनहरे किस्से। नौ बजकर 45 मिनट विविधा लेकर आता है हर रोज एक नया रंग, आज है रंग भक्ति संगीत का। जी हाँ, आप सुनेंगे प्रोग्राम अर्चना। आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा लेकर आपके साथ होंगे हम, मैं आरजे पूर्णिमा और साथ होंगी आरजे आरती ठीक 11 बजे। दिन में 3 बजे म्यूजिकल प्रोग्राम म्यूजिकार लेकर आरती होंगी आपके साथ। और 3:45 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के सुझावों और फीडबैक पर बेस्ड हमारा प्रोग्राम मेल मिलाप। करिएगा मेल्स अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ जिन्हें शामिल करेंगे हम प्रोग्राम आपकी पसंद में ठीक 4 बजे। तो ये थे ये प्रोग्राम्स जो आज आप एंजॉय करने वाले हैं, और इस वक्त ट्यून इन किया है आपने 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम। और अब साथ है एक प्यारा सा ट्रैक अभिजीत सावंत की आवाज में, चलिए हम एंजॉय करते हैं आपके साथ।

की नजाकत को समझकर बिना वक्त जाया करें, कहिए दिल की बात। ट्यूनिंग है आप गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ, सुबह की ताजी हवा, चाय की खुशबू और आपके अपने एफएम पर जिंदगी को नई दिशा देने वाली बातें हैं साथ। मैं हूं पूर्णिमा और आज की सुबह के लिए स्वामी विवेकानंद का एक अलग और बेहद ही खूबसूरत विचार है हमारे साथ, जो इस मॉर्निंग को बनाने वाला है और भी खूबसूरत। जी हाँ, ये है मॉर्निंग मंत्र आज। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। कितनी गहरी बात है ना कि कानपुर की मुश्किलें इस बात का संकेत होती हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी अगर चुनौती दे रही है तो समझ लीजिए मंजिल भी आपका इंतजार कर रही है। तो आज अगर दिन ना थोड़ा सा मुश्किल लगे तो घबराइए मत, क्योंकि मजबूत लोग आसानी से नहीं बल्कि संघर्षों से बनते हैं। तो एक मुस्कान रखिए, हौसला बनाए रखिए और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए। मुस्कुराहट और पूरे जोश के साथ, क्योंकि आप कनेक्ट हो चुके हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ, जिसे एंजॉय कर रहे हैं आप 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर।

तो कानपुर की बात अब सोशल मीडिया के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीषण गर्मी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। धूप में काम करने वाले लोग खूब पानी पिएं, बीच बीच में आराम करें और खुद को हाइड्रेट रखें। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल के नए गाने घिस घिस घिस को लेकर एक मजेदार पोस्ट शेयर की है। अगर जिंदगी थोड़ी सी घिस रही है ना, तो थोड़ा म्यूजिक और मस्ती भी जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक्स पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सो माय डियर लिसनर्स, ऐसी और अपडेट्स के लिए बस कनेक्ट रहिए हमारे इस फ्रीक्वेंसी के साथ जिसे एंजॉय कर रहे हैं आप 102.2 एफएम पर, और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। इस मॉर्निंग में आपके साथ एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक एंजॉय करते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in।

0: सूचना समाप्त हुई। एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

वेल, 7:31 मिनट हो चले हैं और आप कनेक्ट हैं हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ। जी हाँ, और हमारे जिन लिसनर्स ने हमें किया है अभी भी ट्यून इन, उन्हें हम बता दें कि एक खूबसूरत दिन कर रहा है आपका इंतजार। हमारी और आपकी मुलाकात को हम मनाते हैं और भी खास ये जानकर कि आज के दिन यानी 27 मई ने इतिहास के पन्नों में छिपाए हैं कौन से राज। जी हाँ, तो खोलते हैं पिटारा और जी हाँ, इस यादों का खूबसूरत पिटारा और रूबरू करवाते हैं उन खास बातों से। 27 मई सन 1930 को अमेरिकी आविष्कारक रिचर्ड डू ने पारदर्शी सेलोफेन टेप का को पेटेंट कराया और आज यह टेप हमारी रोजमर्रा के जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है। जी हाँ, दुनिया भर में लोग तोहफा यानी गिफ्ट्स को पैक करने के लिए छोटी छोटी मरम्मत तक हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। सन 2010 में आज ही के दिन भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में परमाणु तकनीकी से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1964 में 74 वर्ष की आयु में इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। और अब आज के इस दिन इस पल को हम बनाते हैं खास आपके साथ, आप तक की खूबसूरत सा ट्रैक पहुंचाकर। सो ट्यून इन रेनबो कानपुर के साथ जहां चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्राइकोडर्मा और पेनिसिलियम नाम के फंगस मंगल की मिट्टी से जहरीले तत्वों को खत्म कर देंगे और जैविक कचरे को बचाकर उसे खेती के लायक बना देंगे। यानी अब अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से खाद लेकर जाने की टेंशन नहीं होगी। इस खोज से मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना बहुत जल्द सच हो सकता है। क्या है ये हम बस ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ, और एक प्यार सा ट्रैक कर रहे हैं आपका इंतजार।

जी हाँ, तो देश दुनिया से हम लाए हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने सिक्किम दौरे के दूसरे दिन कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आज ही वो गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। तो दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी खबर जो आपका दिमाग बिल्कुल घुमा देगी, जी हाँ, सोचने पर कर देगी मजबूर। जी हाँ, नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की जहरीली और बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाने का एक अनोखा ही तरीका ढूंढ निकाला है।

जी हाँ, आपके दिल को चुरा कर रखने का काम है हमारा, क्योंकि ट्यून इन किया है आपने हमारे इस शो गुड मॉर्निंग कानपुर को। तो भाई कानपुर वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि सिटी अपडेट्स के साथ बिल्कुल रेडी हैं हम आपके साथ। आने वाले 21 जून को अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं ना, तो ये

खबर है आपके लिए। इक्कीस जून को एक तरफ जहां नीट यूजी की परीक्षा है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली करीब 300 ट्रेनों को गोविंदपुरी और चंदेरी स्टेशनों से डायवर्ट करके चलाया जाएगा, क्योंकि स्टेशन पर होना है बड़े इंटरलॉकिंग का काम। तो इस दिन सफर पर निकलने से पहले रूट जरूर देख लें ताकि आपको ना हो कोई परेशानी। और एक बड़ी और गर्व महसूस कराने वाली खबर हम सभी के लिए कि अब भारतीय सेना के जवान दुश्मनों को चकमा देने के लिए एक नए अंदाज में नजर आएंगे। कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री यानी ओआईएफ अब हमारे जवानों के लिए डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट वर्दी से मैच करते खास हरे रंग के बूट तैयार कर रही है, जो बर्फीली पहाड़ियों, रेगिस्तान और जंगलों में जवानों के लिए आरामदायक होंगे। 7:45 का वक्त, ट्यून इन किया है आपने हमारे शो गुड मॉर्निंग कानपुर को, तो एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

वेल वेल बॉटम मूवी से अभी आपने ये ट्रैक एंजॉय किया हमारे इस शो गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ, जहां एक कप चाय, प्यारी सी मुस्कान लिए और अब ये स्माइल और भी होने वाली है शाइनी, बिकॉज हम साथ लाए हैं खेलों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। तो करते रहिए अपने काम, बस रेडियो का वॉल्यूम रखिए अप, पहुंच रही है हर खबर दिल से दिल तक। जी हाँ, हम सब ने देखा आईपीएल में आरसीबी का धमाका। आईपीएल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को जोरदार अंदाज में हराकर प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, और कप्तान रजत पाटीदार की शानदार पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया है। बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजों के सटीक प्रदर्शन ने फैंस को खूब रोमांचित किया। वहीं फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी है खास खबर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी और रोनाल्डो जैसे सितारों को एक बार फिर मैदान पर देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं। दुनिया भर की निगाहें अब इस महाकुंभ पर टिक चुकी हैं, जहां चारों तरफ है

और हमने दिया आपको इस दिन को खूबसूरत बनाता मॉर्निंग मंत्रा, बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट जानकारियां और स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ। अब आ चुके हैं हम एक खास सेगमेंट को लेकर आपके साथ। जी हाँ, हमारा ये प्रोग्राम जहाँ हर रोज हम बताते हैं आपको मौसम का हाल। जिस मौसम ने हम सबको किया है बेहाल, आज कैसी रहेगी उसकी चाल। तो बता दें, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 43% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। तो आपको रखना है अपना खास ख्याल, तो बस रखिए खुद को हाइड्रेटेड। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है, वो भी खुद को अच्छे से ढक कर। और गुड मॉर्निंग कानपुर का अब ये प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक।

सो माय डियर लिसनर्स, अब यहाँ से पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर के साथ।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन

0: आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई और इसके

0: tournament final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी. यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर.

कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट, वक्त की धूल में छिपे हुए वो नगमे जो आज भी दिल की धड़कनों में बसते हैं, जिन्हें सुनते ही यादों के दरवाजे धीरे धीरे खुल जाते हैं। आप जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल के साथ, जहां हम साथ मिलकर सजाएंगे सुरों, एहसासों और यादों की खूबसूरत महफिल। तो इस महफिल से पहला नगमा लाल दुपट्टा मलमल का, फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आनंद मिलिंद के संगीत से सजा, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में है ये गीत। चलिए सुनते हैं इस प्रोग्राम का ये पहला नगमा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आरजे पूर्णिमा के साथ। और इस प्रोग्राम का ये अगला सॉन्ग कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में समीर का लिखा नदीम श्रवण के संगीत से सजा।

जी हाँ, प्यार की खूबसूरत नजरों से सजा है हर सपना। और इस प्रोग्राम का ये अगला सॉन्ग बस एक सनम चाहिए, कुमार सानू की आवाज में समीर का लिखा, नदीम श्रवण के संगीत से सजा।

सुरों की पुरानी महफिल का ये अगला सॉन्ग और अंतिम सॉन्ग है बेटा फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, जिसके लिरिक्स लिखे समीर ने और कंपोज किया आनंद मिलन ने। आप एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग और पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से।

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

कानपुर की साउंड वेव्स के साथ कनेक्ट है आप। 9 बजे का वक्त और वक्त के इन लम्हों में हम समेट कर रखने वाले हैं हमारे और आपके बीच कुछ बातें, कुछ निशानियां गुजरे।

वेल इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ही कनेक्ट हो चुके हैं आप अपने फेवरेट प्रोग्राम रस बहार के साथ। जैसा एंजॉय करते हैं आप हर रोज द सेम टाइम एंड द सेम फ्रीक्वेंसी। और अब इस खूबसूरत वक्त में हम बात करेंगे उस महीने की जो सिर्फ गर्मियों का नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई यादगार फिल्मों का भी गवाह रहा है। जी हाँ, ये मई का महीना। उन्नीस सौ नब्बे से लेकर अब तक मई ने बॉलीवुड को ऐसी फिल्में दी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। कहीं रोमांस था, कहीं दोस्ती, कहीं डर और कहीं देशभक्ति का जुनून। तो चलिए आज रसबहार में खोलते हैं बॉलीवुड की यादों का वो पिटारा जहां हर साल की एक फिल्म ने एक कहानी बनकर हमारे सामने कुछ यादें रख दी। जी हाँ, तो ये है इन मई की महफिल, फिल्मों के सुनहरे किस्से। और इन किस्सों को हम शुरू करें उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक हम पहुंचा रहे हैं आप तक हमारे इस प्रोग्राम में।

जी हाँ, हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार की आवाजों में इस अफसाने को सुनने के बाद सुनते हैं इस महीने यानी मई में रिलीज मूवीज के कुछ अनसुने किस्से और उन मूवीज के सॉन्ग्स। सो गेट रेडी गाइस, क्योंकि बात है उस दौर की जब फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर्स दीवारों पर लगते थे। जी हाँ, कैसेट्स बार बार रिवाइंड होती थी और लोग थिएटर के बाहर लंबी लाइन लगाते थे। याद आया 90s का वो दौर जो गुजरा और दे गया मई के महीने में रिलीज ऐसी कई फिल्में जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। साजन, सड़क और हम जैसी फिल्मों ने लोगों को दीवानगी की हद तक जोड़ा। जिसने प्यार की परिभाषा बदली और लोगों को बना दिया शायराना। फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप, 9:14 का वक्त और ये चल रहा है प्रोग्राम रसबहार, जिसे लेकर पूर्णिमा है आज आपके साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित

0: राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
0: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
0: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हुए आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आप रस बहार। और इसके बाद वक्त आया दोस्ती प्यार और नई सोच का, यानी सन 2000 के बाद बदलने लगा फिल्मों का अंदाज। जहां इसी मंथ यानी मई में रिलीज हुई मूवीज चल मेरे भाई, जी हां याद आया, सलमान खान, संजय दत्त और करिश्मा कपूर की ये मूवी। और साथ रिलीज हुई 12 मई को जंग। चल मेरे भाई में पहली बार सलमान खान और संजय दत्त ने इतने बड़े स्तर पर दो भाइयों की कॉमिक केमिस्ट्री से हम सबको चौंका दिया। फिल्म के सेट पर दोनों की मस्ती के किस्से काफी मशहूर थे और कई सीन्स में उनकी नेचुरल बॉन्डिंग हमें साफ नजर आती है। इस मूवी में एक सॉन्ग है मेरी नींद जाने लगी है, जी हाँ उस दौर में ये सॉन्ग यूथ की पसंदीदा सॉन्ग रहा। वहीं जंग में अजय देवगन का गंभीर और इंटेंस अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। दोनों फिल्मों में ईयर 2000 में बॉलीवुड का अलग अलग रंग हम सब ने देखा, तो चलिए हम भी रंग जाते हैं उस दौर के इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंजॉय किया आपने हमारे संग फिल्मों के सुनहरे किस्सों से सजी इस महफिल में, जहां आज है संग इस महीने रिलीज मूवीज जिन्होंने

जी हाँ, और ऐसे ही इस दौड़ में जब 13 मई 2011 को थिएटर में रिलीज हुई मूवी रागिनी एमएमएस और हॉरर का नया ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद 20 मई को प्यार का पंचनामा, जन्नत 2, शूट आउट एट बडाला और बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, पीकू, तनु विट्स, मनु रिटर्न्स, इन सारी मूवीज में हमने अलग अलग पहलुओं को देखा और शायद, जी हाँ शायद, अपने जीवन की किसी कहानी से जोड़ा भी। इतनी सारी मूवीज के सॉन्ग्स को सुनाना पॉसिबल नहीं, पर यहाँ हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ट्रैक जिस पर आप थिरकने वाले हैं, आई एम श्योर। कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ चुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार, पूर्णिमा है आज आपके साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी हाँ, 102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है आप, साथ हैं, कनेक्ट हो चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ, जहाँ इस मंथ रिलीज हुई मूवीज के पिटारे से आ रही है एक से बढ़कर एक बेहतरीन मूवीज। तो आगे बढ़ते हैं, जब देशभक्ति और दमदार कहानियां हमारे सामने आई। मई 2018 में राजी और परमाणु जैसी फिल्मों ने देशभक्ति को नए अंदाज में पेश किया, और फिर 2022 में थिएटर में रौनक लौट आई भूल भुलैया 2 से। ये वो टाइम था जब लोगों ने कोविड के बाद थिएटर की ओर रुख किया और हम सब ने सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल के बोर्ड एक बार फिर से देखे।

जी हाँ, और अब आया आज का दौर और आने वाला कल, और रिलीज हुई मूवी 1 मई 2026 राजा शिवानी, रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित और अभिनीत। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और स्वराज स्थापना पर आधारित है। और 22 मई को एक और मूवी आई, चांद मेरा दिल। कैसी है ये मूवी, क्या स्टोरी है, ये तो आप इसे देखकर ही जान पाएंगे। तो प्लान कीजिए स्पीकेंट, और फिलहाल हम प्ले कर रहे हैं एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के साथ, और ये है हमारे प्रोग्राम का वाइंड अप मोड ट्रैक। जी हाँ, यानी लास्ट ट्रैक।

जी हाँ, फिल्म सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी वो हमारी पहली मोहब्बत बन जाती है, कभी दोस्तों की याद तो कभी परिवार के साथ बिताई गई वो शाम जो जिंदगी भर याद रहती है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हर दौर का आईना होता है। आई होप एंजॉय किया होगा आपने मई की इस महफिल में फिल्मों के सुनहरे किस्से। वेल, पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने की, बट ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर के साथ।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

भक्ति की मधुर सरगम जहां मन को मिले शांति का एहसास। आज है रंग भक्ति का हमारे उस प्रोग्राम में जहां संगीत में बसती है श्रद्धा और हर सुर में छिपा है ईश्वर का आशीर्वाद। मैं हूं पूर्णिमा अर्चना प्रोग्राम के साथ। तो आइए कुछ पल प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में गाई इस आरती से।

0: पर्सनल लोन ऑफर,
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी

0: सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

नर में है नारायण, महेंद्र कपूर की आवाज में सुनिए ये भक्ति गीत। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को करती हूँ यहीं पर वाइंड अप। मिलूंगी आपसे ठीक 11 बजे हम नवा प्रोग्राम में, आज मेरी हम नवा आरजे आरती के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। योगी सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को भव्य एवं नव्य स्वरूप प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होने वाली भव्य गंगा आरती श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के पावन संगम क्षेत्र में अब प्रतिदिन फ्लोटिंग जेटी पर भव्य गंगा आरती का आयोजन शुरू हो गया है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर स्थित फ्लोटिंग जेटी पर गंगा पूजन के बाद आरती उतारी और इसका शुभारंभ किया। इससे संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रत्येक शाम को एक अविस्मरणीय दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता

आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावोलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IAS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रही जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। 28 और 29 मई को कई राज्यों में आंधी चलने, बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में कल भी दिन भर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिन भर विशेष पूजा अर्चना की, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रेनबो के संग
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर। शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आपन भारत देश का विविधता, श्रेष्ठता और लोकगीतन की मिठास, खुशबू इस सब लेके आप सबै के बीच में आपके रेडियो साथी रत्ना शुक्ला आई गई हैं। तो सबै श्रोतागण के प्रणाम, स्नेह नमस्कार, खम्बागड़ी सा केम छो। हम यू सब कुछ पठे दिए ने सब जनन का। मुला बताई दे कि 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यू कार्यक्रम सुगंध माटी की शुरू हो गवा है। बने रहे हो हमरे साथ, तो शुरू की जाए आज का ये सुघर सफर ये गीत के साथ। तो चलो सुना जाए।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अरे भाई ई कैसन जेठ बैसाख के दुपहरी भइल बा। सूरज देवता खूबे चमकत होवे त अगर बहुत जरूरी ना होके त घर से बहरे निकसबे मत करी। बाकी रोजगार खातिर बहुतन के गांव से शहर और शहर से गांव त आवे जाए के परब करी। त कुछ बात एकदम मत भूलत, सुना हम का कहे जा रहे हैं। घर से निकसे से पहले पेट भर पानी पी के तब निकसी, साथ में पनिया के बोतल भी रख लीन। ओए के बाद सूती मुरेठा गमछा दुपट्टा से खोपड़िया के ढक ले। रस्ते में कौनो सड़ल पुरान खुला दुकान के खान पान मत खाई। जूस नींबू पानी सत्तू शरबत बेल यू सब पिया करी। ओए के बाद गरम सरद से सावधानी बरते। हाँ, गर्मी सर्दी से सावधानी बरते से कहे से कहना कि नीक नीक तबीयत रही और नीक नीक तबीयत के बाद कहूँ जाए आए के बहुत मन करी और जीव अच्छा रही, है ना। यू सब बातें एहतियात बरते के हैं। तो चलो यू मीठी मीठी गीत तनिक सुन ले, ओके बाद और बत कही करब तुम सब लोग के साथ।

वाह वाह वाह, बोलिया बोली लू गोरिया जैसे कोई कोई लरिया, अत्ते इत्ते समान और तुम मीच मीच गवन आप सुनो, बहुत बहुत नीक गवन हमका यू लागत है। और अब खूब भालो एकदम दारुण बंगला गान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और बहुत ही सुनावा बहुत ही परंपरागत गान है ये।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
4: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
5: शत्रुपा से माँ जी।
4: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
5: शत्रुपा से।
6: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
5: शत्रुपा से।
7: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बुद्धि मेरी, बुद्धि मेरी, बुद्धि मेरी।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अब यू कहे के बेरिया है कि आप सभी लोगों से हम कहित हैं कि आप लोग अपन विचार दे सकत हो, रख सकत हो FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल करके। कार्यक्रम चल रहा है सुगंध माटी की, आप सभी लोगों के साथ है आपकी हम सफर, आपकी सखी रत्ना शुक्ला। तो थिरकत हो कि नहीं, कैसे कि गर्मी के दिन पड़त है तो जौन जौन काम करे के है, चाहे यू एरिया में चाहे अगली बेरिया में, लेकिन काम तो करे के है, तो काम तो करे के चाहिए और काम जल्दी जल्दी निक निक निपटाए के। लेकिन साथ में कहूं अपने आसपास FM रेनबो जरूर लगाई रहो। कैसे कि भारत की इतनी विविध विविध भाषाएं हैं, विविध विविध रंग हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, सभी की हम बात कर रहे हैं, सभी के हम बारे में कुछ कुछ तनिक तनिक गीत सुनाए जा रहे हैं। तो यू गीत सुनो और एक गीत के बाद हम यू गीत के बाद बात करब। कैसे कि यू गीत आवे खातिर बहुत बेकरार, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैसे पहुंची श्रोता लोगन तक। तो चलो सुनवाई दे तुम सबन का ये गीत।

तो युग का सुनो के राजस्थानी के बहुत तारीफ बतावे के बाद आवे वाले जो युग गीत सुनो ना, तो गोरी अपन पल्लों के लटकाए घूमत रही और बालम से कहते थोड़ा सा परे हट जाओ, तो प्रीतम बतावत है कि गोरी पल्लो भीग ना जाए तनिक ऊपर कर ले, तो यही खट्टी मीठी नोक झोंक गोरी की खूबसूरती का कईस कईस गावा गया युग गीत में। कत्ता बढ़िया नकारा ढोल सब सुनत हो यूहू, हम बजाए दीन घूमर। अपन रंग बिरंगी संस्कृति वीरता अनूठी कलाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध राजस्थान, यहाँ की समृद्ध विरासत हाथ की मीनाकारी घूमर कालबेलिया तेरह ताली और चरी नृत्य बहुत कुछ और, बंधेज लहरिया कुंदन मीनाकारी मेला खान पान दाल बाटी चूरमा घेवर जिसको मिठाई कहते हैं वेशभूषा पारंपरिक आभूषण बहुत ही मशहूर संस्कृति वैभव सब कुछ और मीठी मीठी बोली के साथ ये घूमर नृत्य।

भाई हम तो यू गीत सुन के गदगद आ गए। कैसे के घूमर नृत्य करने में बड़ा मजा आवा थे, बहुत नीक नीक सब का कहते गहना होते उनके साथ, पोशाक बहुत अलग होते, ये सब पहन के अगर नृत्य करे लागो तो का बात है, झूमत झूमत झूमत झूमत झूमत झूमत मार घूमर बिल्कुल सर चढ़ के बोले लागी। और उसके बाद हम बढ़ाते हैं काहे से कि हम बोले रहे कि जत्ते लोग हो जौन जौन सुनते हो आप लोग सब कार्यक्रम में मेल कर सकते हो, तो देखो मेल कर दी ने मोहम्मद आसिफ हैदराबाद तेलंगाना से सुनती और लिखा है रत्ना मेरे को माटी की सुगंध प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसको सुनकर गाँव की याद आ जाती है और आप लोगों की प्रस्तुति तो लाजवाब होती ही है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी लगी कि अगर इस कार्यक्रम को सुन के जिसका नाम ही है सुगंध माटी की सुनकर अगर आप गाँव की यादों से जुड़ जाते हैं तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है और दिल में एक अलग सा सुकून मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। अब हम बात पढ़ते हैं मोहम्मद आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है, लिखा है प्रणाम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार मोनू सेठ जी, प्रोग्राम में आपके स्वागत व ई प्रोग्राम खातिर हमारे नानी जी बहुत उत्सुक रहते हैं और आज हमारे नानी जी के आम के गलका बनाए हैं। अरे वाह, ऐसी ऐसी नीक नीक बात कह देते हो बीच में। नानी के सबसे पहले पहले गोड़ लागी, उसके बाद मोनू सेठ जी कहा कि गलका कौन चीज के साथ खाइयो, कौन चीज के साथ खाइबू तुम यू बताओ, बेसन की रोटी के साथ खाइयो कि कौन और चीज के साथ खाइयो।

0: पूरी के साथ खाइए, अब कहा जाने कौन चीज के साथ खाइए। और हम हुआ नानी के हाथ से बना भोजन और गलका खाब, साथ ही साथ प्रोग्राम सुनत रहे। तो पुनः प्रोग्राम तो कार्यक्रम में सुने के बहुत जरूरी कहे कि तुम्हारे लोगों के खाते नहीं कार्यक्रम बनावा जाते और पेश करा जाते। तो भैया मुन्नू सेठ बहुत बहुत शुक्रिया मेल करे खाते, नानी जी के तो हमारे गोड़ लागे प्रणाम कह दियो है ना। वही के बाद गलका खाओ सेहत बनाओ। वही के बाद का लिखिन है मोनु से ठाके का लिखी, बरसते नीर में जब माटी मह कुठी, हर श्वास में जैसे उमंग से बह कुठी, सोंधी से खुशबू लिए कण कण है मुस्कुराता, ये माटी का चंदन सबको है लुभाता। बहुत नीक, बहुत अच्छी लाइनें आपने लिखी हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी माटी की खुशबू को हम तक पहुंचाती हैं। सोनू परवाना मेल कर इन्हें लिखी है, लिखी है सोनू परवाना जी, लिखा है कि नमस्कार बहुत बहुत, और माटी की खुशबू परिवार हमारी जड़ों संस्कारों और जीवन के सबसे गहरे सुकून के प्रतीक है। जिस तरह पहली बारिश में मिट्टी की भीनी सुगंध मन को तरोताजा कर देती, ठीक उसी तरह परिवार का साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें ऊर्जा और अपनापन प्रदान करता है। तो परिवार का साथ आपका बना रहे और साथ में संस्कारों की जो एक माला है उसके सब दाने आप लोग बिनते रहें और संस्कारों के साथ जीवन पार करते रहें। और इसके साथ हम आपको सोनू परवाना जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मेल करने के लिए। बड़े ध्यान से आप लोग सुनते हैं और सुनने के साथ साथ मेल करते हैं, अपने विचार रखते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। प्रोग्राम में जुड़ जाने की सबसे बेहतरीन कोशिश है ये। अब आंचल सेठ क्या लिख रहे हैं, दीदी को राम राम, हमारे सास ससुर भी आपका राम राम कहते हैं, हम के राम राम गोड़ लगी तो हर सास ससुर के बहुत बहुत प्रणाम, हमको भेजे थे पठे थे। और माटी की खुशबू ये सिर्फ एक महक नहीं बल्कि हमारी जन्मभूमि और संस्कृति से जुड़ा एक गहरा एहसास है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी मिट्टी की याद और वहां का जुड़ाव हमेशा हमारे भीतर बसा रहता है। ये बहुत खूब बात आपने कही आंचल सेठ जी, खालिसपुर से आपने मेल किया है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारा स्वभाव वो हमारे साथ रहता है। दुनिया के किसी भी देश में हम चले जाएं तो ये गहरा सा एहसास जो है संस्कृति का अपने साथ बनाए रखिए, अपने साथ वालों को भी इस एहसास के साथ जोड़िए। महेंद्र दीपन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा बड़ा सा मेल किया इन्होंने, गांव रूणा जिला नागौर राजस्थान से आपका नियमित श्रोता हूं। आज सुबह से मैंने 7 बजे रेडियो ऑन किया, तब मैंने उम्मीद थी कि सुबह 8:15 से दोपहर 12 बजे तक आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल हम आपके साथ जुड़ गए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम शुरू और आपकी सुरीली आवाज कान में पड़ी, मेरा मन प्रसन्न सचमुच प्रसन्न हो गया जी। आपके साथ साथ बहुत हमको भी खुशी हुई आपका मेल पढ़कर। और गुड मॉर्निंग लखनऊ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सभी आरजीएस पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट कर सकें और बहुत कुछ आप तक पहुंचा सकें। इसके बाद लिखते हैं, मैम आपके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा प्रोग्राम सुगंध माटी की मुझे बेहद पसंद है और मुझे इस शो का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। आपकी शानदार प्रस्तुति इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती है और आप लोग इतना मन लगा के सुनते हैं तभी तो 4 चांद लग जाते हैं। इसके साथ इसी खुशी के मौके पर मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, राजस्थान की स्वर कोकिला आदरणीय नाम लिखा है जी का भी कोई खूबसूरत सा राजस्थानी लोकगीत प्ले कर दीजिए, आपकी आवाज़ में राजस्थानी माटी की महक को सुनना मेरे लिए बेहद खास होगा। तो आपने जब ये मेल किया होगा उसके बाद इसी आवाज़ के 2 गाने आपने सुने, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे और आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमें सजेशन देने के लिए और इतनी हौसला बढ़ाने के लिए। महेंद्र दीपन जी इसी तरह से मोहब्बत लुटाते रहिए एफएम रेनबो के साथ। अब हम इतने सारे मेल शामिल कर चुके हैं तो सोचते हैं कि आप लोगों ने जो संस्कृति से जुड़ाव की और माटी की सुगंध की जो बात की ना, तो ये गाना तो बनता है, आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। इस गाने को सुनिए और उसके बाद फिर आती हूँ वापस लौट कर।
1: लाल मंगा

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग,
3: FM रेनबो के संग।
5: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

और देखो 10:57 हुएगा। अरे हाँ बिल्कुल, जरा सा टाइम बचा है और इतने लोगों ने मेल कर दिया है, कैसे कैसे सबके मेल शामिल करूं। और ये मिसेस गीता सेठ जी का मेल आ गया है, आंगन की गीली मिट्टी में खेलना, आम के पेड़ों की छांव, दोपहर में दादी नानी की गोद में सिर रखकर सो जाना असली असल जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते थे, वहां की पूरी बात इन्होंने लिखी। गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ रामराज जी का भी मेल आ गया है, गुलफसा सिद्दीकी जी का भी मेल आ गया, तेज बहादुर यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोशनी रावत जी आपका भी बहुत स्वागत है, घनश्याम सिंह जी, वकील अहमद जी और जितने लोगों ने हमें मेल किया, मोहम्मद आसिफ जी, इन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पूरा मेल शामिल नहीं कर पा रही हूँ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन आपने जो बात लिखी है वो सब बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने लिखी है। 10:58 हो गया, बिल्कुल भी मेल शामिल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जाते जाते आप तक ये गुजरात की संस्कृति से आपको जोड़ के जाऊंगी और ये गीत आप तक पहुंचाती हूँ। आप सबसे कहेंगे अपना ख्याल रखिए और नीक नीक गवनई के साथ एफएम रेनबो के साथ जुड़े रहो। रत्ना शुक्ला मिलिए अगले कार्यक्रम में, बने रहो सुनत रहो।

0: तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम हमनवा में, जहां बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर हम आ चुके हैं स्टूडियो में। मैं आरजे पूर्णिमा और मेरे संग है आज आरजे आरती
1: जी। पूर्णिमा, मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो में और सभी लिसनर्स का कर रही हूँ तहे दिल से स्वागत प्रोग्राम हमनवा में। और हम दो हमनवा आके स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, और आज का जो माहौल है ना वो भी बड़ा खुशनुमा है।
0: हमारे स्टूडियो का माहौल जरूर खुशनुमा है, लेकिन आरती बाहर का जो हाल है वो तुमसे बेटर कौन जानता है, क्योंकि तुम बिल्कुल अभी भी आई हो।
1: उफ पूर्णिमा, ये क्या पूछ दिया तुमने। पूर्णिमा सच में बाहर का जो मौसम है ना, बाहर की जो गर्मी है ना, उसको कह सकते हो अभी मॉर्निंग से ही बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब बाहर निकलो ना तो सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो गला सूखता है, गर्मी लगती है, और गर्मी कुछ इस तरह की है कि लग रहा है कि हाँ नौतपा स्टार्ट हो गए हैं, और पूरे तेज के साथ जो सूर्य देवता है वो धरती को तपाने के लिए निकल पड़े हैं सुबह से ही। और कहते हैं ना कि इन 9 दिनों में सूरज की जो तपिश होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसको बयां करना मुश्किल हो जाता है। लगता है कि गर्मी जो है वो अपने चरम पर है।

0: बिल्कुल, लेकिन नौतपा सिर्फ गर्मी का नाम नहीं बल्कि प्रकृति के उस चक्र का भी हिस्सा है आरती, जो हमें धैर्य, सावधानी और मौसम के बदलते रंगों का एहसास कराता है।
1: बिल्कुल, तो इस बदलते मौसम में, इस तपते मौसम में बस खूब पानी पिए, सुरक्षित रहें, और हम बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होने देंगे गर्मी का। तो जुड़े रहें हमारे साथ प्रोग्राम हमनवा में, हम आपके मन को रखेंगे कूल कूल।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को लेकर हम आपके साथ हैं और गीतों की बारिश से आपके मन को भी भिगा जाएंगे। तो हमनवा में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो थोड़ी सी बातें त्योहारों के महत्व की, कि बच्चों को हम कैसे इन त्योहारों से जोड़ें, सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों की भी हम बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे स्टार्टअप की, और ये स्टार्टअप आप ज़रूर सुनेंगे, कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ, और साथ ही
1: होगी रेसिपी, और रेसिपी का लुत्फ उठाएगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के बारे में भी बात करेंगे। तो आज बातें बहुत सारी हैं, और फिलहाल पूर्णिमा, अब मेरे ख्याल से हमारे जो लिसनर्स जुड़े हैं उनके लिए एक बढ़िया सा सॉन्ग प्ले कर दिया जाए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: 102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप और हम नवा प्रोग्राम के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं और आज इस प्रोग्राम को लेकर पूर्णिमा और आरती हैं आपके साथ। और देखो ना आरती, जिंदगी में बहुत सारे रंग हैं और खुशियों के, अपनेपन के, मिठास के, जो रिश्तों को और करीब ले आते हैं और इन्हें गहरा बनाने का काम करते हैं हमारे तीज त्योहार।
5: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा तुमने। और जो त्योहार होते हैं यानी सिर्फ छुट्टियां नहीं होती हैं बल्कि रिश्तों में गर्माहट, संस्कारों की खुशबू और अपनों के साथ बिताए गए वो पल होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं।
4: लेकिन आज की तेज भागती डिजिटल दुनिया में एक सवाल अक्सर सामने आता है आरती, कि क्या हमारे बच्चे त्योहारों की असली भावना को समझ पा रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि दीपावली सिर्फ पटाखों का नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है?
5: या फिर रक्षाबंधन की बात करें तो ये सिर्फ राखी बांधने का नहीं बल्कि रिश्तों की सुरक्षा पर विश्वास का पर्व है। दरअसल त्योहार जो होते हैं वो बच्चों का जो महत्व और मिल बांट कर मनाने का जो तरीका होता है इसे सिखाते हैं। और घर में ढेर सारे पकवान बनते हैं, बच्चे सजावट करते हैं और वहीं से संस्कार धीरे धीरे उनके मन में उतरते जाते हैं।
4: बिल्कुल, और इसी बात से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है आरती जो याद आती है कि एक बच्चा था आरव, उसे त्योहारों में कोई खास रुचि नहीं थी। दीपावली जैसे त्योहार पर जो इतना बड़ा त्योहार है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, घर परिवार के लोग एक साथ आते हैं, वो उस दिन भी बस मोबाइल का गेम खेलता। और एक दिन उसकी दादी ने उसे रामायण की कहानी सुनाई, अपने पास बुलाया और कहा कि कैसे 14 साल वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटने पर जो है लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई और इस त्योहार के महत्व को समझाया। और उस दिन पहली बार आरव ने अपने हाथों से घर में दीप जलाए, दीप सजाए और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि त्योहार सिर्फ मनाने की चीज नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का बहुत ही खूबसूरत जरिया है, एक माध्यम है। और देखो ना, ऐसे ही त्योहारों से जोड़ते हैं हमारे कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियां जो हमारे घर परिवार के लोग हमसे हमें सिखाते हैं।
5: बिल्कुल सही कहा, और इतनी अच्छी कहानी के माध्यम से तुमने जो अपनी बात रखी, जो अपनी बात बताई वो सच में दिल को छूने वाली है। और कह सकते हैं ना कि जब वही बच्चे घर को संजोते हैं, घर को सजाते हैं और जिस तरह से तुमने कहानी में बताया तो बहुत ही जो मन में खुशी उत्पन्न होती है वो अलग होती है। और अमल में आने वाली बात यही है कि जो हम देखते हैं वही सीखते हैं। अगर हम त्योहारों को सिर्फ औपचारिकता की तरह मनाएंगे तो उनके लिए भी उसका महत्व कम हो जाएगा। और इसके लिए कुछ तरीके भी हम अपना सकते हैं बच्चों से जुड़े इन त्योहारों को मना करके कि हम किस तरह से इनको उल्लास उत्साह पूर्वक मनाएं।
4: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि जब बच्चे जिन चीजों को सुनते हैं, अगर उन्हें हम कहानी के रूप में सुनाते हैं या फिर कोई स्टोरी बुक में देखते हो ना कि कोई पिक्चर्स को देखकर जब वो चीजें समझते हैं तो वो उन्हें जल्दी समझ में आती हैं। तो बस कहानियां यही काम करती हैं। और ये हम हैं कि सजावट और तैयारियों में बच्चों को भी शामिल करें, पारंपरिक कपड़ों और खानपान के पीछे की जो वजह है वो बताएं कि आखिर क्यों ये ट्रेडिशनल जो है ड्रेस या कॉस्ट्यूम है, क्यों ये तरीके अपनाए जाते हैं, परिवार के साथ पूजा या छोटी छोटी रस्में हैं उनमें उन्हें जो है भाग लेने के लिए कहना चाहिए
5: और उन्हें

0: जोड़ना चाहिए हमारे तीज त्योहारों से। और सबसे जरूरी बात जो होती है पूर्णिमा, वो ये होती है कि त्योहारों के पीछे छुपे जो मानवीय मूल्य हैं उन्हें भी समझाएं, जैसे प्रेम, सम्मान, दया और एकता, कि वो त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है। त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, वो धागे हैं जो पीढ़ियों को जोड़ते हैं, जो बच्चों को उनकी मिट्टी, उनकी संस्कृति और परिवार से जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल।

0: और बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपने एंजॉय किया।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम 102.2 की फ्रिक्वेंसी से, और आपके साथ जुड़े हैं हम यानी आरजे आरती और आरजे पूर्णिमा।
0: जी हाँ, और देखो आरती, जैसे इतनी प्यारी सी आवाज़ में हमारी स्टेशन आईडी थी ना, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत है हमारी ये जिंदगी, और जिंदगी बहुत अनमोल है, और सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। और देखो, जब ये आज का दौर है जहां तेज रफ्तार मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हमारे बीच सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रही है।
1: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा तुमने, और यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार कहा है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे जुड़ी है लोगों की जिंदगी।
0: बिल्कुल, और उन्होंने लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, ओवर स्पीड से बचने और नशे में वाहन ना चलाने की अपील की है।
1: हाल ही में पूर्णिमा यूपी पुलिस और ट्रैफिक विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि सेफ्टी ओवर स्पीड यानी रफ्तार से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित घर पहुंचना।
0: और इस विषय में हमारे साथ जुड़ी हैं आईपीएस रवीना त्यागी, देखते हैं वो हमसे क्या कहना चाहती हैं।
2: मैं रवीना त्यागी सभी शहरवासियों से यह अपील करती हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें, उल्टी दिशा में वाहन ना चलाएं, लेन ड्राइविंग का ध्यान रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, हॉर्न का कम से कम प्रयोग करें, सिग्नल पर अवश्य ध्यान दें। ध्यान रहे कि आपके अधिकार वहीं तक हैं जब तक आप दूसरों के अधिकारों पर हस्तक्षेप ना करें। सुरक्षित रहें, सावधानी से चलें और बेहतर यातायात व्यवस्था देने में कानपुर पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद।

0: और हम हैं आपके साथ इस खूबसूरत सफर पर, यानी हमनवा के साथ आरजे आरती और आरजे पूर्णिमा। और बहुत एक्साइटिंग सी खबर आपके लिए हम शेयर करते हैं कि आज से शुरू हो रहा है आपके सुझावों और फीडबैक पर बेस्ड प्रोग्राम मेल मिलाप। और ये प्रोग्राम आप सुनेंगे हर महीने के चौथे बुधवार, यानी कि आज, और आज है तो इसे सुनना ना भूलिएगा। 3:45 पर ये प्रोग्राम मेल मिलाप।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड।

0: कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर, मेल मिलाप।
2: और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमनवा प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती और आरजे पूर्णिमा। अब पूर्णिमा, बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो कहते हैं ना कि एक कहावत कही जाती है कबीरदास जी की, कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी हमें जीवन में संतुलन, निष्पक्षता और समझदारी, ये जो कहावत है, ये जो बात कही गई है, ये कहावत हमें यही सिखाती है।
3: बिल्कुल, और आज के समय में जहाँ छोटी छोटी बातों में रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, वहाँ ये देर नहीं लगती, वहाँ आज की ये सीख, ये कहावत और ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है आरती, कि हम इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर लें।
2: और ये जो बात कही गई है ना कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों से दूर रहें या भावनाहीन बन जाएं, बल्कि इसका जो कह सकते हैं असली मतलब है वो ये है कि किसी के प्रति अंधा पक्षपात भी ना हो और बेवजह दुश्मनी भी ना हो। यानी जीवन में कई बार हम केवल अपने पसंदीदा लोगों से मन की बात करते हैं, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो, और कुछ लोगों से क्या होता है कि बिना वजह मन में दूरी बना लेते हैं, और यही जो पक्षपात होता है, जो बैर होता है, वो समाज में तनाव पैदा करता है।
3: बिल्कुल, और यदि हम निष्पक्ष होकर के सोचे ना, तो परिवार हो, विद्यालय हो, दफ्तर हो या समाज, हर जगह शांति बनी रह सकती है। जैसे एक शिक्षक यदि सभी जो स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं उनके साथ समान व्यवहार करे, एक अधिकारी यदि बिना भेदभाव निर्णय ले, और एक मित्र यदि सच्चाई का साथ दे, तो रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। कबीरदास जी ने कहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अर्थात हमारी वाणी, हमारा जो हमारी बात है वो ऐसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो किसी के मन में कटुता ना पैदा करे।
2: और तुम्हारी बात से मुझे एक चीज और याद आ रही है कि आजकल का जो दौर है ना, वो सोशल मीडिया का दौर है, और ऐसे में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस, विवाद ये भी बढ़ जाते हैं। लोग बिना पूरी बात जाने ही ना, पूर्णिमा, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और ऐसे में ये जो कहावत है ना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये सिद्धांत हमें संयम और विवेक सिखाता है।
3: बिल्कुल, तो अगली बार ना आप बिल्कुल हमारी इस बात को, इस दोहे से थोड़ा सा सोच करके, समझ करके इसे जरूर जीवन में अपनाइएगा। फिलहाल हम प्ले करते हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: वन जीरो टू पॉइंट टू की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमनवा और आरटी। अब हम बात करने वाले हैं आज के खास दिन की। 27 मई ये वो दिन है जब भारत अपने प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धापूर्वक याद करता है।
7: और पूर्णिमा, नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था वो केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे एक दूरदर्शी नेता, प्रकृति प्रेमी, उत्कृष्ट लेखक और बच्चों से बेहद स्नेह करने वाले इंसान थे। और इसी प्रेम के कारण, इसी चाहत के कारण बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे।
6: उन्होंने स्वतंत्र भारत को विज्ञान, शिक्षा, लोकतंत्र और आधुनिक सोच की एक दिशा दी। IIT, बड़े बांध वैज्ञानिक संस्थान और योजनाबद्ध विकास जैसी कई मजबूत नींव उनके विचारों का परिणाम थी।
7: अच्छा, कुछ उनके प्रेरणादायक विचार जो थे वो ऐसा, जब सुनो तो ऐसा लगता है कुछ कहना चाहते थे, जैसे नागरिकता देश की सेवा में निहित होती है। उनका कहना था कि असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, अपने उद्देश्य भूल जाते हैं।
6: बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि उनका बच्चों से कितना लगाव था। उनका कहना था, बच्चे बगीचे की उन कलियों की तरह हैं जिन्हें प्यार

0: प्रेरणादायक विचार जो थे वो ऐसा जब सुनो तो ऐसा लगता है कुछ कहना चाहते थे, जैसे नागरिकता देश की सेवा में निहित होती है। उनका कहना था कि असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श अपने उद्देश्य भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि उनका बच्चों से कितना लगाव था। उनका कहना था, बच्चे बगीचे की उन कलियों की तरह हैं जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है।
0: और उनका बहुत सुंदर संदेश भी था कि समय वर्षों के बीतने से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल इतिहास का नाम नहीं बल्कि आधुनिक भारत के उस सपने का प्रतीक है जिसमें शिक्षा, विज्ञान, शांति और मानवता की रोशनी बसती है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

0: सच में पूर्णिमा, और ये जो सॉन्ग है ये हमें यही सिखाता है कि हम एक हैं, और ये बदलते भारत की पहचान भी है। और बदलते भारत की जब हम बात करते हैं तो नए अवसरों की बात करना कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है, और हमारा जो कानपुर है वो नए अवसरों को तलाशने में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहा है। जिसे हम पहले कहते थे लीडर सिटी, औद्योगिक शहर, वो कानपुर अब स्टार्टअप सिटी के रूप में भी अपनी पहचान बनाने लगा है।
1: बिल्कुल, स्टार्टअप इक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यानी आईआईटी कानपुर, यानी आईआईटी कानपुर ने सैकड़ों नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद की है। लोग पहले सोचते थे आरती कि स्टार्टअप केवल दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में ही हो सकते हैं, लेकिन आज कानपुर की यूथ, कानपुर के युवा भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर नई पहचान बना रहे हैं।
0: एग्जैक्टली पूर्णिमा, और इसी क्षेत्र में एक नया नाम सामने आ रहा है, एक नई खोज सामने आ रही है। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप ने देश का पहला ई ट्रैक्टर बनाया है, और ऐसा हाल ही में हुआ है। आईआईटी कानपुर से जुड़े एक

0: स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर तैयार किया है, जो खेती को आधुनिक और सस्ता बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है वो एक बार चार्ज होने पर 4 से 5 घंटे का बैकअप देता है।
1: बिल्कुल, क्या बात है। और ये 90% से अधिक स्वदेशी जो घटक है उनसे विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर खासकर भारत के छोटे और जो सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और ये स्मार्ट कॉम्पैक्ट ईवी ट्रैक्टर खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी लाएगा, ग्रामीण भारत में हरित रोजगार सृजित करेगा और सटीक और समृद्ध कृषि के नए युग की शुरुआत भी करेगा।
0: और इस नए युग की शुरुआत के साथ साथ प्ले कर रही हूँ एक बढ़िया सा सॉन्ग।
1: बिल्कुल।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: और इसी के साथ वापस आ चुके हैं हम प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के उस लास्ट सेगमेंट में जिसमें हम आपसे कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर शेयर करते हैं। और आंटी, जब गर्मी का ये मौसम है ना, जब गर्मी में किचन में जाने का मन नहीं करता, तो बस याद आता है कुछ भी ऐसी रेसिपी हो जो हेल्दी भी हो और झटपट से बन जाए, है ना। तो क्यों ना आज हम शेयर करें हमारे लिसनर से लेमन राइस की रेसिपी।
3: बहुत बढ़िया, और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और कहीं ना कहीं जो किचन वाली तुमने बात कही, जो हाल होता है ना गर्मी में, तो उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है और पौष्टिक भी है।
2: तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को। इसमें आपको लेने हैं पके हुए चावल 2 कप, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच, राई 1 छोटा सा चम्मच, मूंगफली 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 पत्ते, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई या फिर अपने स्वाद के अनुसार, सूखी लाल मिर्च 1 और हल्दी 1/2 छोटा चम्मच।
3: अब करना क्या है, कढ़ाई में तेल गर्म करना है और उसमें राई डालना है, और जब राई चटकने लगे तो उसी में मूंगफली डालकर हल्का सुनहरा भूनना है, और अब इसमें डालना है करी पत्ता, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च। जब वो हल्का सा भुन जाए तो हल्दी और नमक मिलाना है, और इसके बाद इसमें डालना है पके हुए चावल, और ये पके हुए चावल डाल करके अच्छे से मिलाना है। अच्छा, एक चीज़ और है पूर्णिमा, ये जो पके हुए चावल हैं ये अगर थोड़ा सा ठंडे होंगे तो जो लेमन राइस बना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसके बाद जब उनको अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें, तो गैस को कर देना है बंद और उसमें डालना है ऊपर से नींबू का रस और हल्के हाथ से मिलाएं। इसके बाद हरे धनिया से बढ़िया से सजा कर गार्निशिंग करके गर्मा गर्म परोसें। चाहें तो उसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, है ना, ये आपके स्वाद पर डिपेंड करता है। और बाकी ये बन गए हैं बढ़िया से
2: लेमन राइस की रेसिपी, यानी कि झट से बन जाने वाली। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सीज़न जो है वो गर्मी का है, और नींबू जो है बेटर है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे खान पान में, और हम नींबू हर पल इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे वो नींबू शिकंजी हो, चाहे नींबू पानी हो। तो आती हमारी लिसनर्स को आई होप ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और इसी

0: बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त हो चला है इस प्रोग्राम से इजाजत लेने का, तो मुझे यानी आरजी पूर्णिमा को दीजिए हमनवा प्रोग्राम से इजाजत,
1: और मुझे भी यानी आरजी आरती को दीजिए इस प्रोग्राम हमनवा से इजाजत। नमस्कार।

आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी कार्य योजनाओं पर ठोस व प्रभावी एवं त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री केशव प्रसाद मौर्य कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंख्यांकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यांकी के बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चाइनीज वेबसाइटों, इंडोनेशिया सिम और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में से 8 मोबाइल फोन, 114 बैंक खातों की पासबुक और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में 4,35,64,000 रुपए से अधिक की रकम फ्रीज कराई गई है। वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर श्रेणी के अंतर्गत भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती का अंतिम परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। इस साल की शुरुआत में लखनऊ स्थित मध्य कमान के प्रतिष्ठित आर्मी ग्राउंड पर कुल 592 अधिक महिला अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाई है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर हाँ। नहीं कूचाओ बाजार नहीं,
2: को एक ना मल्टीपल
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
9: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
10: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
11: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
10: और लाइट बिल के
11: अब 0 रुपए कैसे दूं।
10: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
12: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर, हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
14: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

पता है कल मेरे घर मेहमान आए थे और खाना खिलाया हमने उनको और बहुत सारी तारीफ भी की उन्होंने। और क्यों पता है, खाना जितना स्वादिष्ट और टेस्टी था उससे ज्यादा कहीं पौष्टिक भी था। जी हाँ, इसमें मैंने बहुत कुछ खास नहीं किया था क्योंकि ये होता है बहुत आसान दोस्तों, क्योंकि हमारे किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान यानी कि नॉलेज नहीं होता है, और जब हो जाता है तो आप फिर बन जाते हैं परफेक्ट स्वाद में भी और हेल्थ में भी। तो कुछ आज हम प्रोग्राम शत्रुपा में बात करने वाले हैं खास चीजों की, जो कि होती तो है हमारी किचन में लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है या हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, अच्छा बताइए, जब आप अपनी रसोई में देखते हैं तो वहां पर तरह तरह के बीज मिलते हैं ना, कई सारे मसाले भी मिलते हैं, सौंफ, अलसी, अजवाइन, तिल, मेथी, जीरा, जी हाँ बहुत सारी चीजें हैं कलौंजी, और हम सब उसका इस्तेमाल भी करते हैं खाने में और अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और आपके किचन में रहती है, जरा सोचिए। जी हाँ, हम सीड्स की बात कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल आजकल हम सभी कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। और वैसे भी कहा गया है ना कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप, मतलब लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल नुकसानदायक होता है और अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी नुकसानदायक होता है। तो बस सोचिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं और क्या खास है उसकी बात हम बताएंगे आपको, लेकिन इस गाने के बाद। दोस्तों, शालिनी आपके साथ, 12:12 और 52 सेकेंड हो चले हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned, 100.7 FM Rainbow,
6: धड़कन लखनऊ की।

इस गर्मी में जो सबसे ज्यादा आराम पहुंचाता है वो क्या है बताइए? हमारा एफएम रेनबो, जी हाँ, जो सभी को कूल रखता है। और जब माइंड कूल होता है ना दोस्तों, सब चीज कूल दिखाई देती है। अच्छा चलिए, अभी हम बात कर रहे थे रसोई में दिखने वाले सीड्स की, और आज हम अपने प्रोग्राम शत्रुपा में बात करने वाले हैं चिया सीड की। जी हाँ, जो कि आजकल हेल्थ और फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। और ये देखने में छोटे छोटे काले और सफेद रंग के जो सीड्स है ना, देखने में आपको भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इनके अंदर पता है पोषण का खजाना छुपा होता है। जी हाँ, और अगर चिया सीड की बात करें तो ये मूल रूप से मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और कहते हैं कि जब पुराने समय में जो योद्धा थे ना, उनके एनर्जी का जो स्रोत था वो चिया सीड्स था। वो लोग चिया सीड्स का ही इस्तेमाल करते हैं और आज हम इन्हें सुपर फूड कहते हैं, जो क्योंकि इससे हमारे शरीर को जो है ना जरूरी वाले कई पोषक तत्व मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं बताएं? फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ओमेगा थ्री होता है, फैटी एसिड है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ कई सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। सारी बातें अभी थोड़ी ना करेंगे, एक गाना लेते हैं और उसके बाद होंगी और भी बातें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:31 और 55 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ आज लेकर सीआरसी की बात। देखो, अभी हमने ढेर सारी बातें की ना, ये कब कैसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता था और इस वक्त हम इसका यूज कैसे करते हैं। आप कैसे करते हैं? अच्छा, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। जी हाँ, बहुत से लोग इसे अपनी डाइट को हेल्दी बनाते हैं और कई

सारी चीज़ों के साथ इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कोई अलग से स्वाद नहीं है, मतलब है तो बहुत हल्का सा है, और इसके खाने के भी कई आसान तरीके हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रात भर पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट भी खाया जा सकता है। कुछ लोग इसे दूध, दही, स्मूदी, ओट्स या फ्रूट सलाद में भी मिलाकर खाते हैं। कुछ लोग या आप भी नींबू पानी या नारियल पानी में भी मिलाकर इसको खा सकते हैं। इसका अलग से कोई स्वाद पता नहीं चलेगा। और अगर आपको अपना दिल सही रखना है, हाँ, हम कौन से दिल की बात कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, वो दिल नहीं जो इश्क मोहब्बत प्यार में पड़ जाता है, हम आपके दिल की बात कर रहे हैं, सेहत की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी चिया सीड्स को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, वो शरीर में अच्छे फैट को बढ़ाने और खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हमारी मदद करता है, और साथ ही साथ जो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जो लोग दूध कम पीते हैं उनके लिए भी चिया सीड्स कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो अगर आपको दूध नहीं अच्छा लगता है, नहीं पीते हैं, तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

12:39 और 52 सेकंड का वक्त शालिनी आपके साथ लेकर प्रोग्राम शत्रुपा में खास बात चिया सीड्स की हो रही है बात। तो आयरा, अभी तक बहुत सारी चीजें हमने बात कर ली, कैसे खाना है, इसमें क्या क्या है, कब हुई इसकी शुरुआत, कहाँ से। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी बात जानने वाली ये है कि इसकी जो संतुलित मात्रा है उसका भी हमें जरूर पता होना चाहिए। वैसे भी किसी भी चीज की तरह चिया सीड्स का भी जो यूज है वो भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। आमतौर पर इसे हम 1 से 2 चम्मच ही इस्तेमाल कर देते हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त होता है। और इसे बिना भिगोए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पेट में आपको एसिडिटी या मतलब गैस की भी शिकायत हो सकती है और पेट में भारीपन भी हो सकता है। और जब इसको हम भिगोकर रात भर भिगोकर सुबह खाते हैं ना, तो ये ज़्यादा सही होता है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं होती है और पेट हमारा बहुत देर तक भरा भी महसूस होता है। और वैसे भी हम सभी आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है ना, इसमें हम हेल्दी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं, हम वापस से कोशिश कर रहे हैं नेचर की तरफ लौटने के लिए, पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल करने के लिए। तो बस चिया सीड्स उसी दिशा में एक छोटा सा लेकिन असरदार कदम होगा आपका अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं? और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सलाह लें उसके बाद इसका कितना सेवन करना है उसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए भी ये कहना है कि बिना सलाह के इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर शरीर अलग होता है, इसीलिए किसी भी सुपर फूड को ज्यादा खाना मतलब ज्यादा फायदा ये नहीं समझना चाहिए। किसके बॉडी पर क्या सूट करता है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर जब किसी गंभीर बीमारी से हम जूझ रहे हैं तो भी हमें बिना किसी की राय लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

और दोस्तों 12:56 और 23 सेकंड हो चले और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। बस इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले इतना ही कहना चाहेंगे कि सही मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए तो चिया सीड्स शरीर के लिए लाभकारी होता है, लेकिन संतुलन और सावधानी हमेशा जरूरी है, चाहे वो बात चिया सीड्स की हो या किसी और चीज की बात हो। तो बस ध्यान रखना अपना और इस्तेमाल करना इसका, और सलाह मिल सकती है किसी की तो जरूर ले, और बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। नेक्स्ट प्रोग्राम ओटम पे तेरी बात में आप ये बताइए कि गर्मी का प्लान क्या है आपका। समर वेकेशन हो चुके हैं बच्चों के, तो इसमें आप क्या प्लान कर रहे हैं, फटाफट मैसेज कर दीजिए।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता, धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति को रेखांकित करते हुए संस्कृति शुभा स्तंभ साझा किया है। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास और मजबूत संकल्प के बल पर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आज एक्स पर लिखा, निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आज देशवासी इसी भावना से भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में शांतिवन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समावेशी, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक सोच पर आधारित नेहरू का नेतृत्व सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के जांच के दौरान 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनको मिलाकर इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। गिरफ्तार किए गए लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरू पर 3 छात्रों की मदद करने में अहम भूमिका है। इनमें एक कोचिंग सेंटर के मालिक का बेटा भी है। उन्होंने आरोपित पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने में इन छात्रों की मदद की। नोएडा में विवाहित पूजा पाल की हुई संदिग्ध मौत के मामले में उसके परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ आज दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। लखनऊ के डालीगंज रेलवे स्टेशन से डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी का नियमित संचालन शुरू हो गया है। यह ट्रेन आज 5:20 पर प्रस्थान करेगी। बादशाह नगर, गोमती नगर, मल्लौर, बाराबंकी, जरवल रोड, सरयू, कर्नेलगंज, गोंडा, इटावा तोक, बलरामपुर, तुलसीपुर, पंचपेड़वा, बढ़नी, सिद्धार्थ नगर, कैपियरगंज होते हुए नकहा जंगल अगले दिन सुबह 4:45 पर पहुंचेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों 1:04 और ये देखिए 5 मिनट हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है ओठों पे तेरी बात। और अगर हम इस वक्त की बात करें तो सबके घर में बच्चों की छुट्टी मुट्टी हो गई है ना और जो मम्मी है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो तो खुश हैं, लेकिन जो घर की मम्मी है ना वो ये कह रही हैं अरे ये स्कूल भी क्यों ही बंद हो गए। और वो तो समझती नहीं है, है ना बच्चों, कि छुट्टी क्या चीज होती है। मम्मी तो यही चाहती है ना कि संडे को भी छुट्टी ना हो, स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएं ताकि घर में शांति रहे। लेकिन अब ये शांति नहीं रहने वाली, अब तो इस जो आप शांति को खोज रहे हैं ना वो अब जुलाई में ही आएगी। तब तक के लिए अब जो भी है उसे इंजॉय करें खुशी खुशी, और हमें बताएं कि अब आप समर वेकेशन का क्या प्लान कर रहे हैं। और फटाफट हमें बताइए akashvani@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है, इस पर आपको अपने दिल की बात कह देनी है। और साथ ही साथ सुनते रहना है प्यारे प्यारे से गीत।
1: Banjo.

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सबसे बड़े निशानों को भी मुसलसल कोशिश, तहम्मुल और मजबूत कुव्वत इरादी से हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम इसी जज्बे से मुतासर होकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सुभाषितम कहता है कि एक ख्वाहिशमंद शख्स निशाना हासिल करने की सिमत में अगर मुसलसल बाकायदगी से कोशिश करता है तो वह उसे यकीनी तौर पर हासिल कर लेता है। ऐसा करते हुए उस शख्स को बीच रास्ते में ही हार मानकर अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सेंसस कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि को इस कमेटी का रुक्न मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी में रुक्न सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यह कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर फितरी वजूहात से पूरे मुल्क में हो रही डेमोग्राफिक तब्दीलियों की जामे तशखीस करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये उस पेठी है मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेहत और महकमा तिब्बी तालीम के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और इमरजेंसी खिदमात की क्वालिटी मुसलसल बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरण

0: कारणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के पेमेंट गेटवे निजाम में इसलाह के लिए अवामी शोबे के 4 खसूसी बैंकों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर तवील बातचीत की। इस दौरान जनाब प्रधान ने तलबा को दिक्कतों से बचाने के लिए बगैर रखना और महफूज अदायगी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान CBSE ने वाजे किया है कि आंसर शीट की तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। CBSE ने कहा है कि असली तशखीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियस्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी नकहा जंगल स्टेशन से 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:25 पर डालीगंज पहुंचेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा भाग हो गए, जबकि 5 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हलके के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया, जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। रियासत में कल भी दिन भर तेज धूप, शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा, मगर शदीद गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से राहत भरी खबर है। महकमे के मुताबिक मगरबी खलल के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश के भी इम्कान है। इससे दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ तपिश से भी राहत मिलेगी। कल दारुल हुकूमत लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.9 और कम से कम दर्ज हरारत 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क में सबसे गर्म रहा, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: 7 सुरों की सरगम है,
4: 7 जन्म है, 7 समंदर,
2: 7 हमारा हर दम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
5: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

दोस्तों 1:23 का वक्त प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात में शालिनी है आपके साथ और ढेर सारी ईमेल्स भी आ चुके हैं। आ चुका है मेल कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव का और प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी कल्पना सभी लोग हैं। और भाई ये बताइए आप इतने सारे नाम हर रोज लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं? और इस प्रोग्राम में तो हम किसी एक के मन की बात जानना चाह रहे थे, हो सकता है सभी ने मिलके अपने मन की बात भेज दी है लिख कर। और आपने लिखा है कि बच्चों को नाना नानी के घर जाने का मन करता था लेकिन बहुत धूप होने की वजह से हमने नाना नानी के घर बच्चों को नहीं भेजा है और बच्चे घर पे ही रहकर छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती समझ रहे हैं लेकिन क्या करें, बच्चों को समझ लेना चाहिए। अगर बच्चे समझदार हो जाएंगे सुधाकर जी तो फिर वो बच्चे नहीं बड़े कहलाएंगे, है ना। और अहमद नवाब का बहुत ही अच्छा सा जवाब आया है और इन्होंने लिखा है कि अभी इस टॉपिक में क्या लिखूं दीदी, 5-10 साल के बाद बोल सकती हूँ। बिल्कुल हम समझ रहे हैं जब आप अपने बच्चों को अपने नाना नानी के घर लाएंगे, है ना। चलिए ना, अहमद नवाब ने हमें संडीला से मेल किया है और हम इतना इंतजार करेंगे, तब आप अपनी बात बताइएगा। और मेल एक और आ चुका है आजाद अली अनवर का, रिजवाना परवीन के साथ बहादुर गंज गाजीपुर से। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं तो आप ये भी सुन रहे होंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, वो होगा शुरू हॉटमेल 2 बजे से। लेकिन अभी तो आप हमें बताइए ना कि इस समर वेकेशन का क्या प्लान है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:37 का वक्त, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं अपना प्लान तो हमें हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसमें कुछ आपके हेल्प कर दें कि समर वेकेशन में आपको क्या करना चाहिए। बसंत कुमार सिन्हा का मेल आ चुका है और इन्होंने कहां से लिखा है, गुड़ियाडीह से इन्होंने हमें मेल किया है और ये बता रहे हैं कि अच्छा ये बिहार से ये इन्होंने हमें भेजा है और ये छोटे से गांव पिरहा में जन्मे थे जो कि 10 किलोमीटर दूर है गुड़ियाडीह में, अपने नाना नानी मामा का घर है इनका जो कि जंगल के किनारे, मुश्किल से 25-30 वहां पर घर होंगे जिसका एक गांव बना हुआ है और ये कभी कभी माँ के साथ नाना नानी के घर जाते थे और वहां पर इन्हें मोर की आवाज जो सुनाई देती थी उससे मन भा जाता था और साथ ही भालू की भी आवाजें रात में बहुत ही करीब से सुनाई देती थी। ओ, तब तो डर जाते होंगे, क्यों, हम तो आप बता रहे हैं और हम डरे जा रहे हैं भाई, नानी का घर तो घर ही है और छुट्टी का जो मजा है ना वो तो कहीं और नहीं है।

और मेल आ चुका है। रोशनी रावत जी का सफीपुर जिला उन्नाव से है और ये लिख रही है कि मैं क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 8 से 10 साल बाद जरूर बताएंगे। अच्छा, इनका भी उसी तरह से बात होगी जैसे अमन नवाब की बात हुई है। और ये पिंकू सोनी का चिकायत नगर बाराबंकी से मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि इनका मन है कि गर्मी में कुल्लू मनाली घूमने जाएं। और मेरे दोस्त हैं कुलदीप और आकाश, ये अच्छा बस इतना ही नाम लिखा है, इनका नाम मैच कर दे भाई। कुल्लू मनाली जाने का मन तो है घूम के आने का, लेकिन उसके लिए आप कर क्या?

है और इन्होंने लिखा है कि इनका मन है कि गर्मी में कुल्लू मनाली घूमने जाएं। और मेरे दोस्त हैं कुलदीप और आकाश, ये अच्छा बस इतना ही नाम लिखा है, इनका नाम मैच कर दे भाई। कुल्लू मनाली जाने का मन तो है घूम के आने का, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? तैयारी कीजिए, टिकट बुक कीजिए, ध्यान से पूरी प्लानिंग कीजिए, कब कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, क्या क्या पहनने के लिए ले जाना है, तब तो समझ में आएगा कि हाँ आपका प्लान है। और किसका मेल आया है, ये सिद्दीकी, अच्छा गुलाफ्सा सिद्दीकी का है संटीला से। उन्होंने लिखा है, मेरे बच्चों की छुट्टी उनके गांव के घर में गुजर रही है क्योंकि मैं एक वक्त अपने गांव वाले घर में हूँ इस वक्त, अच्छा, और हमारे बाग के खेत में हैं इस समय और सब लोग बड़े खुश हैं और हर साल ये यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आती हैं। बहुत अच्छी बात है। और अब सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, बाकी और भी ढेर सारी ईमेल्स हैं जिनको पहुँचाना है आप तक।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू मोहब्बत के मूल में,
2: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
2: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
2: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
3: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

1:50 हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी फटाफट और जितने ईमेल्स आए हो उनको ले लिया जाए, क्योंकि इसके बाद तो प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो जाएगा। तो बता दें कि तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से आया है और इन्होंने लिखा है कि जब ये छोटे थे तब तो खूब समर में घूमा एंजॉय किया, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है और सेट करके टाइम चलना पड़ता है। हाँ, अब रेनबो जरूर सभी समर वेकेशन बन गया है, क्योंकि हर वक्त अब कनेक्टिविटी इसी से है। क्या बात है भाई, अच्छी बात है। आपका प्यार इसी तरह से हमारे साथ रहे और आप एंजॉय करते रहे। और इन्होंने और क्या लिखा है इसके अलावा, अच्छा मोनू सेठ का मेल आया है, इस मौसम तो अपना ही घर सबसे बेस्ट है। और वकील अहमद का भी मेल आया है, इन्होंने कहा है कि अच्छा आज का मुद्दा ये सुन नहीं पाए, मुद्दा नहीं था आज, तो बस वो बात थी जो आपको अपने दिल की बात बतानी थी और इस वक्त ये हर गांव में है और अभी ये सीतापुर से हमें मेल कर रहे हैं। और सावित्री देवी जी का भी मेल आया है, इन्होंने लिखा है जब इतने मस्त गाने सुनने को मिले और आप जैसे आरजेस के साथ हो तो इतनी धूप में बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। हम घर पर रहकर एफएम के साथ फिलहाल छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। और सावित्री जी, आप हमें कहाँ से मेल कर रही हैं, आपने एड्रेस नहीं लिखा है, लेकिन हाँ अच्छा लिखा है ये अर्जुनपुर लखनऊ से ही आप हमें मेल करती हैं, हमें तो पता है बरगदी से, लेकिन हम देख रहे थे आपने इस बार लिखा कि नहीं। राधेश्याम जी का भी मेल आया है कासगंज से, इन्होंने हमें मेल किया है और इनका लिखना है कि समर वेकेशन में ये अपने ससुराल जाने वाले हैं, सिस्टर के घर घूमने जाने वाले हैं, लेकिन हाँ मौसम सही हो जाए तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। और अब क्या करना है, अब प्रोग्राम को करना होगा चाचा बाय बाय, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में भी रहेंगे आप हमारे साथ अपनी फरमाइश के साथ। तो इस प्रोग्राम का ये खाना हम पहुंचा रहे हैं आप तक, एंजॉय करिए और सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ के। और मेल आईडी पता है ना, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आपको मेल करना है अपनी पसंद के गाने और अच्छे पसंद करिएगा जिससे कि मूड और अच्छा हो जाए। मौसम जरूर गर्म हो लेकिन हमारा जो माइंड है वो कूल हो जाए।

0: कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी

0: और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिक

रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 2:38 और 2 सेकंड का वक्त, और ये वक्त इसलिए बता रहे हैं कि देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपका भी मेल शामिल हो सकता है, अभी भी टाइम है। और बोधराज, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका का मेल आया है उत्तम नगर दिल्ली से, ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है, जितेंद्र, बबलू, अंजू और आरोही, सौम्या, इन्होंने हमें शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है। मेहर अरोरा, ममता, कीर्ति, भूमिका का भी मेल आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है, नरेश, लक्ष्य, लाडो, कोयल, पापा जी, नानक चंद, ये सभी लोग ख्याल बाजार पानीपत से, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, कोयल, डुग्गू का मेल आया हुआ है। दीपेश वर्मा जी का भी मेल है पूनम, ज्योति, शिवांश के साथ में, और इन्होंने हमें पीपरलोट, सरगांव, छत्तीसगढ़ से मेल किया है। बहुत ही प्यारे से ट्रैक की गई है फरमाइश, लेकिन दोस्तों देखते हैं कितने गाने आप तक हम पहुंचा सकते हैं। और ये अनवर सिराज, दानिश, उवेद, इकरार, फैजान का मेल है गंग डुंटवारा से। अच्छा, अभी एक और मेल आया था इसी मेल आईडी से, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज का ठाकुरा वाला से मेल आया है। नवी हसन का भी मेल है, नावेश, शहनाज, सुहेल, राशिद, अमन, यसफ का, इन्होंने दरवाजा ईटा से किया है। और सिकंदरा राव से मुनीब, इशरत ने भी हमें मेल किया है। और सुधाकर, अजय यादव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, शानवी, कल्पना का कालेगांव।

गुरनूर गुरलाल अविराज का ठाकुरा वाला से मेल आया है। नवी हसन का भी मेल है, नावे शहनाज सुहेल राशिद अमन यसफ का, इन्होंने दरवाजा ईटा से किया है। और सिकंदरा राव से मुनीब इशरत ने भी हमें मेल किया है। और सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद शानवी कल्पना का कालेगांव जाफराबाद से मेल आ चुका है। और मेल आया है अहमद भाई दुखनी सदफ जूही इकबाल इमरान, इन्होंने हमें सिटी मुंबई से और नई बॉर्डर दिल्ली से, बिटिया हमना नसरीन आसमा राबिया मंतशा आशु और समस्त फूल वाले फैमिली की तरफ से हमें मेल आया हुआ है। और भाई एक ही मेल कई बार आते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं हमें। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी के साथ हमारे बीच मेल आ चुका है। और जलालाबाद से सुरेश गगनेचा पूनम गगनेचा विशाल प्रिया दिशानी और निमित का भी मेल आ चुका है। दोस्तों इसी के साथ ये सुनिए प्यारा से ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों
5: में। मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

मेल आ चुका है अमरावती महाराष्ट्र से, हर्षा दिलीप, अक्षय रुद्रा, रुचिका और आया हुआ है मास्टर खिल्लू बेगम, इमराना, नवाजेश, दानिश और अमन का आया है। और भाई एक ही लोग ढेर सारे ईमेल कर देते हैं, आप इतना कहने के बाद भी आपका मेल शामिल किया जाता है, और जब भी शालिनी आती है तब तो सभी के मेल हम लेते ही लेते हैं। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी और नौशाद बेबी आले आयान बाबू का मेल आ चुका है। बलौदा बाजार से ग्राम तारा शिव से छत्तीसगढ़ से मेल आया है मनोज विश्वकर्मा जी का है। गुलाबसा सिद्दीकी का भी संडीला से मेल आ चुका है, और ये नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साईं गायकवाड़ का भी मेल आया है, और इन्होंने हमें कहां से मेल किया है, महाराष्ट्र से ये हमें मेल कर रहे हैं। शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी का भी मेल आया है, ताला महाराष्ट्र से मेल किया है इन्होंने, और रामचरण विश्वकर्मा, साहिल और मंजू, रंजन, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का मेल बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल रह गया, मनोज गुप्ता का गोसाईगंज लखनऊ से ये हमें मेल कर रहे हैं, और प्लीज मेरा गाना सुनवा दीजिए। गाने तो सारे आप तक पहुंचाए जाते हैं। और एक और मेल, बेबी शालिया, हलीमा, जिक्रा, आयशा, अब्दुल्ला, मस्जिद, बाबू कॉलोनी से मेल आया है। सुनील पाठक जी का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने क्या लिखा है हम बिल्कुल आपको बताते हैं। अच्छा, इनके साथ में कमल, दीपिका और लोग भी हैं, और फरमाइश की है आपने। राजकुमार डूरी, प्रमोद, पुष्पेंद्र का मेल आया है फ्रांसी हिसार से, और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक को सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपसे।

2:56 मिनट और ये देखिए कुछ सेकंड भी हो चले और इसी के साथ शालिनी करती है आपको इस प्रोग्राम से अच्छा बाय बाय। नेक्स्ट प्रोग्राम अभी भी है, जी हाँ, वो कौन सा प्रोग्राम है बताइए तो जरा, सतरंगी दुनिया, जिसमें ढेर सारे रंगों के साथ हम आपके साथ होते हैं और साबित खान, ब्रिजेंद्र, धर्मवीर और रणधीर गुप्ता, मुकेश गोस्वामी, जावेद अख्तर, इनके भी मेल आ चुके हैं और सभी के मेल आज सब तक पहुंच चुके हैं और इसी के साथ बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

102.2 पर ये है रेनबो कानपुर। और दोस्तों वक्त हो रहा है 3 बजे का और यही वो वक्त है जब आप सुनते हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर, जहां हर धुन देती है दिल को सुकून। और आज की धुनें तो हैं और भी खास, जो चुन कर लाई हूं मैं आपके लिए इस बढ़ती गर्मी में, आपको ठंडक का एहसास कराएंगी ये धुनें। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे 1 घंटे में, प्रोग्राम आपका वही म्यूजिक आर।

0: I love you, I love you.
1: जी हाँ दोस्तों, और ये जो म्यूजिकल सफर है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल ये मौसम गर्मी का एहसास तो कराता ही है, बट साथ मिलाता है ढेर सारी मस्ती, नाना नानी का प्यार, बाबा दादी का दुलार। सो एंजॉय। और ये जो यादें होती हैं ना, जो आप अपनी गर्मी की छुट्टियाँ जब एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये जो यादें होती हैं ये बन जाती हैं आपके और हमारे बीच में। जी हाँ, हमारे और हमारे घर वालों के बीच में। और शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे एंजॉय करते हैं गर्मी की छुट्टियों को, हमारे साथ शेयर कीजिए। इस नौतपा में आप गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ प्रोग्राम म्यूजिक आर में। शेयर कीजिए हमें अपने मैसेजेस। हमारा मेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com, यानी aircansomedia@gmail.com। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे आरती के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक और मेरी यानी आरजे आरती के साथ, और आज की धुनें हैं खास जो चुनकर लाई हूं मैं आपके लिए इस बढ़ती गर्मी में, जो आपको देंगी ठंडक का एहसास या कह दें सुकून के कुछ पल। और दोस्तों, कुछ गाने तो ऐसे होते हैं कि चाहे आप घर पर हों या सफ़र पर, और गर्मी चाहे कितनी भी बढ़ जाए हमेशा दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। वैसे भी ना, नौतपा के जो 9 दिन होते हैं जब गर्मी अपने चरम पर होती है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी बॉडी पर, तेज़ धूप, लू और हाई टेम्परेचर, और जिससे चक्कर आना, थकान, डिहाइड्रेशन, यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक तक का जो रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है। होता है ना ऐसा? तो ऐसे में दोस्तों, खान पान को लेकर रोजमर्रा के जो जीवन में छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, वो हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे ठंडी तासीर वाले फल हमें लेने चाहिए, ड्रिंक्स हैं शरीर को अंदर से जो ठंडा रखते हैं, ताकि हम रह सके कूल कूल या कह सके फ्रेश रह सके। हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं सेहत भरे प्रोग्राम्स भी, जैसे हेल्थ मैगजीन हो गए, स्वास्थ्य चेतना, जिसमें आपके लिए होती हैं ढेर सारी जानकारी, और म्यूजिक तो रहता ही है साथ। तो अभी आपसे बात करेंगे नौतपा के, फिलहाल आपके लिए आ रहा है ये बेहतरीन सा सॉन्ग।

और ये लगन जो है ना, ये दोस्तों ऐसे ही लगी रही, क्योंकि क्योंकि जो प्रोग्राम है वो चल रहा है म्यूजिक आर्ट, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे आरती के साथ। और दोस्तों हम बात कर रहे थे नौतपा की, यानी भीषण गर्मी की और बदलाव की, कि हम क्या चेंज कर सकते हैं थोड़ा कूल रहने के लिए। सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बुज़ुर्ग होते हैं, गर्भवती महिलाएं, तो इनका हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। तो दिन भर करना क्या है, बस दिन भर थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहें, प्यास लगने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। और इसके साथ ही जैसे वाटर रिच फ्रूट्स हैं उन्हें खाते रहें, तरबूज है, खरबूज है और खीरा, जो हमारी जो बॉडी है ना उसे करते हैं हाइड्रेट। इसके साथ ही दोस्तों कुछ नेचुरल जो ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, जैसे छाछ हो गया, नींबू पानी हो गया, सत्तू नारियल पानी, ये जब हम पीते हैं ना तो ये बॉडी को कहीं ना कहीं रिलैक्स देते हैं और हाइड्रेटेड रखते हैं।

और इसके साथ ही दोस्तों बस बने रहे हमारे साथ, बिकॉज ये म्यूजिक ही है ना जो बॉडी के साथ साथ माइंड को भी रखता है फ्रेश एंड कूल। सो बस बने रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर्ट।

जी हाँ दोस्तों, गुलशन बन जाए, और ऐसा तभी होता है जब हम होते हैं अपनों के साथ। और फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, जिसे आप सुन रहे हैं मेरी यानी आरजे आरती के साथ। और दोस्तों, ये जो टाइम होता है ना गर्मियों का, जब घर बच्चों की हंसी से गुलजार होता है, गर्मी कितनी ही हो किचन में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, साथ में होता है फिल्मों का भी इंजॉयमेंट, और इससे घर बन जाता है एज अ थिएटर। और दोस्तों, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, अब एक ऐसी फिल्म का सॉन्ग आपको सुनवाते हैं जिसकी स्टोरी ना कमाल की है, जितनी बार देखो कम है, जिसमें जज्बा है अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का, उनकी कह सकते हैं कि एक एक मिनट से किस तरह से उनका भविष्य निर्माण किया जाता है, जिसमें आमिर खान, साक्षी तंवर और जायरा वसीम, सानिया मल्होत्रा और सुहानी भटनागर हैं, जिसमें कहानी है बेटियों को पहले

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हाँ दोस्तों, जाना कहीं नहीं है क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर जिसे आप सुन रहे हैं 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर मेरे यानी आर जी आरती के साथ। और ऐसे ही आपकी जो छुट्टियों के रंग है ना, ये और भी कलरफुल बना रहा होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि जब ये प्रोग्राम सोते हैं म्यूजिक आर हो गया, आपकी पसंद हो गया, ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपके दिल को छू लेते हैं। और दोस्तों, अब आपको एक ऐसी फिल्म की बात बताते हैं जिसमें है तीन दोस्तों की स्पेन की ट्रिप, स्कूबा ड्राइविंग एंड द स्काई डाइविंग। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ऐसी ही बहुत सी फिल्में बनी हैं जैसे कि हाउसफुल या दिल धड़कने दो, यानी कॉमेडी का मजा भी देने वाली बहुत सी फिल्में हैं जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं इन गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ। और अब आपके लिए मैं प्ले कर रही हूँ एक बढ़िया सा, मेरे ख्याल से और आपके भी दिल को मेरे ख्याल से काफ़ी सुकून देगा ये वाला सॉन्ग, क्योंकि जब होता है एंजॉय, दिल होता है हैप्पी हैप्पी, तो बस प्रोग्राम चल रहा होता है म्यूजिक आर्ट।

जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे दिन याद आते हैं जब हम बीते हुए पलों में झांकते हैं, जब हमने बिताई थी छुट्टियां गर्मियों की। और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, जिसमें बातें हो रही हैं गर्मियों की, और इस टाइम को एंटरटेन मस्ती के साथ साथ क्वालिटी टाइम भी आप बना सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ नया सीख के इसको और भी नया बना सकते हैं, जैसे आप सीख सकते हैं डांस, सिंगिंग, आर्ट, पेंटिंग, या फिर किसी समर कैंप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से समर कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फिलहाल आपको बताती चलूं कि अपने कानपुर में ही 25 से निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। स्पेशल ओलंपिक भारत यूपी की ओर से कैंट स्थित प्रेरणा स्पेशल स्कूल में कैंप के जरिए बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, स्केटिंग की गतिविधियां कराई जाएंगी। तो बढ़ाइए अपनी क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड दोस्ती साथ साथ किससे, अरे भाई म्यूजिक से। फिलहाल आ रहा है ये सॉन्ग आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, हौले हौले हो जाएगा प्यार। और ये जो प्यार है हमारा और आपका, ये बस यूं ही बनता रहे, चलता रहे, और इसी तरह से आप कनेक्ट रहे रेनबो कानपुर के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी आरजे आरती को दीजिए प्रोग्राम म्यूजिक आर से इजाजत। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अपने अगले प्रोग्राम मेल मिलाप में, जिसके लिए बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेल मिलाप।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर पर स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम मेल मिलाप में। आज का ये कार्यक्रम लेकर आपके साथ हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता
1: और मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती ज्योति। सभी सुनने वालों को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों आज है महीने का चौथा बुधवार और अब से हर महीने के चौथे बुधवार यानी कि फोर्थ वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ आप सुन सकेंगे हमारा ये खास कार्यक्रम। आरती बताइए ना हमारे सभी लिसनर्स को कि क्या खास है हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी लिसनर्स के लिए।
1: दीपशिखा खास ये है कि यू तो एफएम रेनबो कानपुर के माध्यम से दिन भर हमारे लिसनर्स हमारे कार्यक्रमों जैसे कि गुड मॉर्निंग कानपुर, हमनवा, म्यूजिका, रस बहार, विविधा और सुरों की पुरानी महफिल को सुनते ही हैं।
0: जी हाँ, और कुछ खास कार्यक्रम हैं जो कुछ निश्चित दिनों पर हमारे लिसनर सुनते हैं, जैसे कि हर रविवार और सोमवार को हेलो कानपुर और हर सोमवार और शुक्रवार को हेल्थ मैगजीन।
1: बिल्कुल, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जाना जाए कि हमारे प्रोग्राम्स हमारे लिसनर्स को कैसे लग रहे हैं और हमारे कार्यक्रम और कार्यक्रमों को लेकर उनके क्या है सुझाव।
0: आरती अपने लिसनर्स के सजेशंस और फीडबैक का रहेगा अब हमें इंतज़ार, जिन्हें हमारे लिसनर्स भेज सकते हैं हमें हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है fmmailmilap@gmail.com पर। हमारे लिसनर्स चाहें तो एक बार फिर से नोट कर सकते हैं fmmailmilap@gmail.com पर, और चाहें आप तो हमें लिख सकते हैं अपने खत भी। हमारा एड्रेस है कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, और हमारा पिन कोड है 208002। तो रहेगा हमें इंतज़ार आपके फीडबैक्स का, लेकिन फिलहाल आज हम सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम में सबसे पहले एक बेहतरीन सा गाना और उसके बाद पढ़ेंगे अपने लिसनर्स के कुछ बहुमूल्य से फीडबैक्स।

0: सच में दीपशिखा, और ये जो प्रोग्राम है ये सच में अलग ही है, और कह सकते हैं ना कि जब आपके जो मीठे मीठे स्माइल है ना इस प्रोग्राम में, और चांद चार चांद लगा रही है, और इसके साथ ही प्रोग्राम चल रहा है FM रेनबो कानपुर पर, हमारा ये है नया कार्यक्रम मेल मिलाप, और जैसा कि नाम है दीपशिखा, अब वक्त हो गया है लिसनर्स के फीडबैक्स पढ़ने का।
1: जी हाँ आरती, लिसनर्स के फीडबैक पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले बता दें अपने सभी लिसनर्स को कि हमारा कार्यक्रम हेलो कानपुर, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पिछले कुछ समय से इसका संचालन नहीं हो पा रहा था कुछ अपरिहार्य कारणों से, लेकिन पिछले हफ्ते रविवार से इस कार्यक्रम का प्रसारण फिर से शुरू हो गया है, और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे मेल्स करके हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका ये पसंदीदा कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए। और देखिए ना, जब हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया तो श्रोताओं ने फीडबैक भेजे हैं अपने इस कार्यक्रम के लिए, तो पढ़िए ना पहला फीडबैक।
0: बिल्कुल पढ़ती हूँ। मुजम्मिल अहमद बारी मोहल्ला कुरसठ उन्नाव से लिख रहे हैं, हेलो कानपुर दोबारा शुरू कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।
1: जी हाँ, इसी के साथ चंडीगढ़ सिटी से एक ईमेल आई है सतीश अनेजा जी की, जिन्होंने लिखा है कि सोमवार की शाम हेलो कानपुर का हमने आनंद उठाया जिसे कौसर जहां ने पेश किया। श्रोताओं से वार्ता बहुत लाजवाब लगी, श्रोता के मूड को भांपते हुए बात करना सच में प्रोग्राम में चार चांद लगा देता है। इस खूबसूरत सी पेशकश के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही लिखा है कि रेनबो कानपुर को हम शिद्दत से सुनते हैं, जो हमारा सुबह से शाम तक भरपूर मनोरंजन करता है।
0: हाँ, और इसके साथ ही ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से अनिल कटियार जी लिखते हैं कि हमनवा कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया लगता है और बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां इसके माध्यम से मिलती हैं, साथ ही मधुर गीत संगीत भी हमें

0: सुनवाया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी लिसनर्स का भी इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स हमें भेजने का। और इसी के साथ आगे बताना चाहेंगे कि भैया मोनू सेठ जो हमारे लिसनर हैं, इन्होंने हमारे बहुत से कार्यक्रम इस बीच सुने। हम नवा कार्यक्रम में आपका मेल लगभग हमेशा ही आता है, और नौतपा पे जो कार्यक्रम अभी प्रस्तुत किया गया हम नवा का, उस पर जेठ की दोपहर को भी शामिल किया गया, तो इन्होंने तारीफ करी है इस कार्यक्रम की। इसी के साथ निधि हमारी एक लिसनर हैं बर्रा कानपुर से, इन्होंने हमारे कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल के लिए अपना फीडबैक भेजा है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के खुशी में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया हमारे केंद्र से। इन्होंने लिखा है कि बेहतरीन प्रस्तुति रही इस कार्यक्रम की, बड़े ही गरिमामयी तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी की अमूल्य विरासत को, इस धरोहर को आप सभी आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखकर बड़ी ही खुशी मिलती है। निधि, हमें भी खुशी मिलती है आपके इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देख के, आपके ईमेल्स देख के। और आरती, आगे भी बता दें कि भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, छत्तीसगढ़ से रामचंद मखीजा और लालपुर शिवराजपुर से भरत चंदेल जी ने भी अपने ईमेल्स के माध्यम से हमारे सभी कार्यक्रमों को बहुत पसंद किया है ऐसा बताया है। लेकिन अभी फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और गाना सुनवाने का हमारे सभी लिसनर्स को।
0: बिल्कुल दीपशिखा, तो सुनवा देते हैं अपने लिसनर्स को एक बढ़िया सा सॉन्ग।

जी हाँ, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये गाना बड़ा ही सही है हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो इतने अच्छे मेल्स, इतने अच्छे फीडबैक्स भेजते हैं हमारे कार्यक्रमों के लिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि और किन विषयों पर सुनना चाहते हैं आप हमारे ये कार्यक्रम, जैसे कि हमारा कार्यक्रम है हेल्थ मैगजीन, उसमें बताइए आपकी किन स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर आप विशेषज्ञों से हमारी बातचीत सुनना चाहते हैं। तो आपके इन सब सुझावों का, आपके फीडबैक्स का, आपकी चाहत का कि क्या सुनना चाहते हैं आप, रहेगा हमें खास इंतज़ार। लेकिन आज कार्यक्रम का समय हो चुका है समाप्त। अगले महीने यानी जून के चौथे बुधवार 24 जून को आपसे फिर से होगी मुलाकात 3:45 पर FM रेनबो कानपुर से। फिलहाल आज इस कार्यक्रम को

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। जुड़ चुके हैं आप हमारे प्रोग्राम आपकी पसंद में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सबसे पहले देखते हैं कि आज किसकी जो मेल है वो आ रही है हमारे प्रोग्राम में। तो आपको बताते चले, होली चौक उत्तम नगर से जुड़े हैं हमारे साथ जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और इन्होंने जो मेल किया है वो किया है सौदागर फिल्म के गीत के लिए। इसके साथ ही दोस्तों स्वर्ण सिंह लिख रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, नमस्कार जी आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। स्वर्ण सिंह गेल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत सुना दीजिए और हमारा नाम जरूर शामिल करो। तो देखिए ना आपके जो नाम है वो शामिल हो गए हैं प्रोग्राम में। और दोस्तों सुनील खेरा जी जुड़े हैं हमारे साथ मुल्लापुर दाखा से, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। हरजिंदर सिंह भाटिया जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, जुड़ सकते हैं आप इसमें अपने नामों के साथ ईमेल्स के माध्यम से। तुलसी मस्किन जी लिख रही है, प्रिय होस्ट मैम जी नमस्कार, किसी भी प्यारे से गीत में मेल पढ़े जी, थैंक्स। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना जी जुड़े हैं हमारे साथ। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में और आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का, जी हाँ एक ये गीत मेरे ख्याल से आप सभी को पसंद आएगा क्योंकि ये जो गीत है ये पसंद किया है बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं। एक और जो मेल आ रही है मास्टर अशोक कुमार जी की, जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ अशोक जी, और इन्होंने लिखा हुआ है जहर फिल्म का जो गीत है उसे इन्होंने पसंद किया है। और इसके साथ ही दोस्तों और जिला खरगोन सनावद एमपी से ये जो मेल है ये इन्होंने किया, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मोसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना जी जुड़े हैं हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों बादशाहो फिल्म के इस गीत के लिए बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं तो आप सभी को सुनवाते हैं सबसे पहले ये गीत।

सॉन्ग अगर तुम मिल जाओ और जहर फिल्म का गीत सुनना चाहा है श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बुड़ाना ने। और अब बढ़ते हैं हमारा जो अगला ईमेल है उसकी ओर। दीपेश वर्मा जी का भी जो मेल आया है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा और इन्होंने हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म के गीत के लिए हमें मेल किया है। और इसके साथ ही कमलकांत गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इन्होंने लिखा है, नमस्कार, किसी भी गीत में नाम को शामिल करें। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता है, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता है हमारे साथ जुड़ी है। इसके साथ ही समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता है, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, आदित्य गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपा गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे आरती के साथ। प्यारी बहना जी आदाब व नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और इन्होंने साथ ही लिखा है कि हमें कृपया नजरअंदाज ना करें, हमारी जो मेल है उसे जरूर शामिल करें प्रोग्राम में। और इन्होंने लोफर फिल्म का गीत सुनना चाहा है हमारे प्रोग्राम में। और इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो चलिए बता देते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले हैं। और इसके साथ ही दुखनी सदफ आरजू और जूही इकबाल फूल वाले इमरान अहमद हैं। कॉपर सेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतिशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली की ओर से इन्होंने जो मेल किया है वो किया हुआ है। और इसके साथ ही हमारे साथ किसान श्रोता

जगन्नाथ पटेल जुड़ गए हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको सुनवाते हैं जहर फिल्म का ये गीत।

हाँ दोस्तों, अगर तुम मिल जाओ तो सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जुड़े हैं हमारे साथ प्रोग्राम आपकी पसंद में। और अगली जो मेल आई है वो आई है बोधराज खोरवाल जी की। फिल्म शागिर्द का गीत इन्होंने सुनना चाहा है, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। उत्तम नगर दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ बोधराज खोरवाल, कमला रानी भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। दिलीप रामेकर जी हमें लिख रहे हैं, नमस्कार प्रसारक जी, आकाशवाणी कानपुर फिल्म दादा, इसके बोल इन्होंने लिखे हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इस सॉन्ग को सुनवा दीजिए। राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और समस्त रामेकर परिवार जी की ओर से हमें ये मेल प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही मोहम्मद मूसा शेख लिख रहे हैं, प्यार भरा आदाब आरती दीदी, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। बिल्कुल हम खैरियत से हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप भी खैरियत से हो। फिलहाल इन्होंने सनावत से, शेख मूसा मोहसिन ने हमें मेल किया हुआ है, आपका तहे दिल से।

सतीश अनेजा जी की मेल हमें प्राप्त हो रही है, लिख रहे हैं, नमस्कार आरती बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इन्होंने लिखा है, फेस पर स्माइल की और जिंदगी में स्टाइल की कमी नहीं होनी चाहिए, क्या खूब कहा है आपने। और इसके साथ ही इन्होंने बॉबी फिल्म के गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है, चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी जो जुड़े थे हमारे साथ। न्यू दिल्ली से जुड़ रहे हमारे साथ कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद। नवी हसन जी जुड़ गए हमारे साथ और लिख रहे हैं, आरती जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब सलाम, मेरी फरमाइश को पूरी करें, काफ़ी दिनों से मेरी फरमाइश पूरी नहीं हुई है और इन्होंने सुनना चाहा है कुली फिल्म का गीत। और इस गीत को सुनने वाले हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, यशफ, और साथ साथ इन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी होगी लिखा हुआ है कि मेरे नाम को कृपया शामिल ज़रूर करें।

इसके साथ ही ताज मोहम्मद जी लिख रहे हैं, आदरणीय प्रसारक जी आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो अब देर न करते हुए आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तम कुमार भगत जी और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और हम भी आपको लाइव सुन रहे हैं और इन्होंने जिस फिल्म के गीत की फरमाइश की है इन्होंने लिखा हुआ है सीमा फिल्म का गीत हमें सुनवा दें जब भी ये दिल उदास होता है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत हैं, गुड्डी भगत हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ और इसके साथ ही इशक मोहम्मद, जी हाँ मोहम्मद इशहाक जुड़े हैं, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा छत्तीसगढ़ रायपुर से, मोहम्मद इमरान एंड इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा गौसिया, फातिमा जुड़े।

उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद और आप ही हैं आसपास और जिसकी पसंद के हम सुनवा रहे हैं आपको गीत। आज मैं हूं आपके साथ आरजी आरती और फिलहाल पाकिजा, जी हाँ ये मेल आ चुकी है बिहार स्टेट डुमराओं से। असमा अंसारी, आमना परवीन, टुक टुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्ला अंसारी और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर ढोंग।

धर्मेंद्र छीपा जी लिख रहे हैं, आदरणीय मैडम आरती जी आपको हार्दिक नमस्कार, आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, हम आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। क्या आप अपने कुछ चहेते श्रोताओं को ही शामिल करते हैं? बिल्कुल नहीं। और देखिए, आपका जो मेल है वो शामिल हो गया है प्रोग्राम में, और इन्होंने साथ ही लिखा है कि हमारा एक मेल क्यों शामिल नहीं होता। अरे भाई, हम आपको बताते चलें कि जब मेल आते हैं, ढेर सारे मेल आ रहे होते हैं, और उसी में से हम जो शामिल करते हैं मेल, उनको लेते जाते हैं, तो हो सकता है आपकी जो मेल है वो पीछे हो जाती हो। तो फिलहाल अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल को शामिल करें। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार जी। फिलहाल आपकी जो

मेल है वो शामिल हो गई है प्रोग्राम में। प्रशांत शिंदे जी लिख रहे हैं, एनी सॉन्ग रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके हैं प्रोग्राम में हमारे साथ। और इसी के साथ अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हमें जो मेल प्राप्त हो रहा है वो है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीप कमल होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक का। और इन्होंने लिखा है, किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें तो इनायत होगी। और इसके साथ ही दोस्तों सोहिल शेख जुड़ गए हैं हमारे साथ, डिस्को डांस फिल्म का नाम इन्होंने लिखा है, मोताला बाजार से। बबलू ठेकेदार, शेख शगिर, शेख वजीर, सोहिल शेख जुड़े हैं हमारे साथ। तो करते हैं आपकी पसंद का पूरा और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। खंडवा रोड सनावत से शहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख, खंडवा से योगेश गुजराती, आनंद जोशी, दुर्गा प्रसाद सैनी। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, जिसे आप सुन रहे हैं रेनबो कानपुर से। और इसके साथ ही हमें लिख रहे हैं बागवान मंजिल छोटी बलिया से, नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ बागवान, छतरी टोल तिघड़ा बाजार बेगूसराय से, अदीबा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम, वली आलम जी। और इन्होंने लिखा है, आरती दीदी को सादर नमस्कार, प्रोग्राम का आनंद हम लाइव उठा रहे हैं, हमें नजरअंदाज मत करना दीदी। तो बिल्कुल भी, देखिए आपका ये जो नाम है, नामों का जो सिलसिला है, जो मेल है, वो शामिल हो गई है प्रोग्राम।

तो दोस्तों यूं ही झूमते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए और जुड़ते रहिए हमारे प्रोग्राम आपकी पसंद में। और फिलहाल अभी जो मेल प्राप्त हो रही है, लिख रहे हैं कार्यक्रम प्रस्तुत करदा आरती ज्योति जी, आज का कार्यक्रम बेहद बेहद बेहद पसंद आ रहा है, आपका शुक्रिया। गीत बेहद जबरदस्त है, शानदार प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, शबिस्ता, पलक और लुबना यश मंसूरी जी। जॉन डिकेस्ट्रो जी जुड़े हैं हमारे साथ जनकपुरी सहारनपुर से। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो एंड विलिस डिकेस्ट्रो जी।

और अब जो मेल हमें प्राप्त हो रही है जेल रोड बक्सर से है, असलम अंसारी, शमसुल हक और शरफुद्दीन अंसारी, डुमरा बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज जालंधर से संदीप कुमार जटोलिया जी की है, और इसके साथ ही रेडियो फैन क्लब आरजेजी नमस्ते लिख रहे हैं, और किसी भी गीत में हमारे नामों को शामिल करें। चंद्रनगर सहारनपुर से हैं प्रभा रानी डोम, आशु डोम, सोनाली और आशा डोम जी। तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

ते हुए लिख रहे हैं। फिल्म का नाम है दोस्ती। दोस्ती फिल्म के गीत को सुनना चाहा है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और साथ में लिख रहे हैं नमस्ते।

रविंद्र मोहनदास जी लिख रहे हैं, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और इसके साथ ही सुरेश नारंग जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रिस्पेक्टेड आरजी जी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार मींस ढेर सारे नमस्कार। और इसके साथ ही इन्होंने लिखा है सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग, चांदनी हो तुम, दिल चांदनी हो तुम फिल्म थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो नाम साफ साफ नहीं समझ आ रहा था। फिलहाल हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम है और इन्होंने लिखा है कि इस फिल्म का सॉन्ग मुझे ज़रूर सुनवा दीजिए। और इसके साथ ही अभिजीत गवहाणकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ और इन्होंने सुनना चाहा है मोहब्बत फिल्म का गीत। आशा रेडियो श्रोता संघ से हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, राही श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर टुक टुक और इसके साथ ही आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से, वैशाली शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर, कुमारी ध्वनि गवहाणकर, परी और प्रिंस एकांश जुड़े हैं हमारे साथ। और इसके साथ ही एक और जो हमें मेल प्राप्त हो रही है वो आ रही है छलक छलक, जी हाँ, देवदास फिल्म के गीत के लिए। और जुड़े हैं हमारे साथ अनुश्री वली जी मेरठ कैंट से, सुरेश डोम, संदीप डोम, अनुश्री डोम, फिल्म नागिन के लिए हमें ये मेल प्राप्त हो रही है। राजकुमार डूडी जी जुड़े हैं हमारे साथ गाँव फ्रांसी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और इन्होंने लिखा है कोई भी गीत हमें

दुतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा लिख रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम में आपको मेरा नमस्कार और हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए बेटा। रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सलेहा खातून और गुड़िया खातून जुड़ चुके हैं हमारे।

आप जुड़े हैं प्रोग्राम आपकी पसंद में और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप विविध, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय रिस्पेक्टेड लिख रहे हैं आरजे ज्योति जी, विल लाइक कानपुर एंड योर प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवर। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग जी। और इसके साथ ही हमें जिस फिल्म के गीत के लिए लगातार फरमाइश आ रही है उसके गीत को हमने कर दिया है प्ले। और फिलहाल सारे नामों को हम बता देते हैं कि कौन कौन जुड़ा है फिल्म नया दौर के गीत के लिए। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर और दिशांत कुमार सिंगड़कर अर्पिता जी जुड़े हैं हमारे साथ। आशा सपकाल जी लिख रही हैं, आरती दीदी को प्यार भरा नमस्कार और आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। शास्त्री नगर बीच शहर से हैं आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, सायराज सपकाल, विशाल सपकाल।

और दोस्तों अहमद भगवान जी लिख रहे हैं कि आरती दीदी जी को सादर नमस्कार, प्रोग्राम का आनंद हम लाइव उठा रहे हैं, हमें नजरअंदाज मत करना दीदी, प्लीज अपनी पसंद के किसी भी गीत को हमें सुनवा दीजिए। बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा और रबिया परी, आशु जोहे सदफ बागवान, छतरी टोल तेघड़ा बाजार बेगूसराय से हैं, अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम और वली आलम जी। इसके साथ ही मुझे यानी आरजे आरती को दीजिए आपकी पसंद, प्रोग्राम से इजाज़त, नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस
4: नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, सुनिए FM समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। पीलीभीत जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में गोमती नदी से जुड़ी विकास योजनाओं एवं नदी के उद्गम स्थल के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की। श्री प्रसाद ने बताया कि जिले में एक जिला एक नदी के तहत गोमती नदी के पुनरुद्धार का कार्य तेज गति से चल रहा है। योजनाओं को गति देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। लखनऊ में जनगणना 2027 की तैयारियों को सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के उद्देश्य से आज लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रांगणकों और एवं सुपरवाइजरों से संवाद स्थापित करते हुए गणना कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का कार्य पूर्ण निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोनल अधिकारी और सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रतिदिन कार्य की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीआईजी सोमेन वर्मा ने बताया कि अयोध्या रेंज के सभी 5 जिलों में पीस कमेटी की बैठकें पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप ईद की नमाज केवल निर्धारित ईदगाह और मस्जिदों में ही अदा की जाएगी, साथ ही कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

हाँ बिल्कुल, चल देंगे हम छैया छैया करते हुए आप सभी के साथ इसी सफर पर जो आप सभी के साथ चल रहा है। 5:10 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में, मैं हूं शादाब आप सभी के साथ। ये घंटा है टॉप 10 म्यूजिक का, 10 ऐसी म्यूजिक या यूं कहें 10 ऐसे गाने मैं आपको इस घंटे सुनाऊंगा। उन गानों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा खास होगा।

0: जो स्टोरी होगी मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल चाहिए चाहिए जो गाना आपने सुना वो था दिल से 1998 में ये मूवी आई, और इस मूवी के बारे में हर कोई वैसे जानता है। खास बात इस गाने की जो थी वो ये थी कि भाई इस गाने को जो शूट किया था वो शूट किया था कहाँ पर यार, कहाँ पर शूट किया था वो गाना, शूट किया था इन्होंने चलती ट्रेन पर। अब ये चलती ट्रेन पर जब गाना शूट हुआ तो आप सोच रहे होंगे यार कई टेक हुए होंगे, कई बार ये रुकी हुई ट्रेन को चलता हुआ दिखाया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं था, आपको जानकर हैरानी होगी, ये चलती ट्रेन पर ही शूट हुआ है ये गाना बिल्कुल, और विदाउट एनी सेफ्टी हार्नेस। जी हाँ, बिना कोई भी सेफ्टी हार्नेस ना शाहरुख खान ने पहने थे ना ही साथी कलाकारों ने पहने थे, और ट्रेन चल रही थी और ये डांस कर रहे थे। और कमाल की बात ये थी कि गाना वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस हुआ, यार रहमान साहब को भी इंटरनेशनल लेवल पर इस गाने से ही पहचान मिली थी। तो क्या उनका जबरदस्त म्यूजिक था, क्या जबरदस्त अंदाज था। फिलहाल अगले गाने की ओर चलें, उससे पहले एक एडब्रेक, एडब्रेक के बाद मिलेंगे डेफिनेटली उस गाने से, और उस गाने की रियलिटी या उसके साथ जुड़ी हुई स्टोरी मैं आपको जरूर बताऊंगा, कहीं मत जाइएगा। गाना कौन सा है बस आपको सामने थोड़ी सी देर में आ जाएगा। फिलहाल एक एडब्रेक आप सभी के लिए।
1: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

बिल्कुल टिप टिप बरसा पानी। इस वक्त हम सभी यही सोच रहे हैं कि यार कैसे भी बरसात हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है बरसात होना। वैसे शाम बाद में मैं बताने वाला हूं कि मौसम कुछ बदलने वाला जरूर है। फिलहाल ये गाना आपने सुना मोहरा फिल्म से, अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन के ऊपर ये फिल्माया गया गाना। मैंने बोला इस घंटे दस ऐसे गाने आप सुनेंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर रही है। तो फिलहाल ये जो गाना जब शूट हो रहा था तो इसमें जो बारिश की गई, जो पानी से आर्टिफिशियल बारिश की गई थी और इसमें नहलाया गया था इन दोनों को, इतना ठंडा पानी कर दिया गया था कि बार बार रीटेक लेने पड़ रहे थे, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से जो एक्चुअल इमोशंस चाहिए थे चेहरे पे वो नहीं आ पा रहे थे। तो डायरेक्टर बार बार रीटेक ले रहे थे और इतना इन लोगों ने नहा लिया था इस टेक के दौरान, शूटिंग के दौरान, या यूं कहें कि इस गाने में, कि इन्हें कई दिन बीमार भी रहना पड़ा। उसके बाद शूटिंग आगे बढ़ी। तो फिलहाल ऐसा होता है, कई बार होता है, कई चीज़ें जब आप करने उतरते हैं ना तब आपको एक्चुअल चीज़ें पता चलती हैं। फिलहाल इस गाने के साथ क्या हुआ था, जो अगला गाना है उसकी भी स्टोरी है फिलहाल आपको बताएंगे। बस आपको कहीं जाना नहीं, स्टे ट्यून्ड।

इस गाने का जुनून उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस गाने को उस वक्त सुना है जब वो लाइव ये गाना रिलीज हुआ था। जी हाँ, 5:24 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। और ये गाना क्या बात है, कमाल का गाना था। हम्मा हम्मा ए आर रहमान साहब की बेहतरीन कॉम्पोजिशन ये आप सभी के सामने लाई गई थी। और इसमें दो चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था, एक तो इंडियन बीट्स और वेस्टर्न म्यूज़िक का सबसे पहला मिक्स किया गया था। और बहुत ए आर रहमान साहब उस वक्त टेंशन में थे कि ये नया एक्सपेरिमेंट काम आएगा या नहीं आएगा। और अब यकीन जानिए, जब ये गाना सबके सामने आया और जो नई जनरेशन थी या उस वक्त की जो जनरेशन थी, उन्होंने बहुत पसंद किया इस गाने को। और हर पार्टी की जान हुआ करता था ये गाना उस वक्त की। तो फिलहाल ये गाने जो नई और यूं कहें वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन करके आप सभी के सामने लाए गए थे। एक और गाने को आप सभी के सामने लाते हैं, उसके साथ की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये गाना पहले सुनिए, फिर हम स्टोरी बताते हैं।

बिल्कुल, ये गाना जब भी आप सुनते हैं तो आपको अपने इंडियन आर्मी की याद आती है, और ये गाना इंडियन आर्मी के लिए ही डेडिकेटेड था। पूरा का पूरा गाना ये बनाया ही से लिया गया था कि उनके दिल की जो फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या चलता है जब वो बॉर्डर पर होते हैं, जब वो ड्यूटी पर होते हैं, जब वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें फरमाने के लिए गाने को बनाया गया था, और वो इमोशंस पूरी तरीके से इस गाने में लाए गए हैं। और आज भी अगर कोई भी इंडियन आर्मी का जवान इस गाने को सुनता है तो वो रो पड़ता है, और इवन हम सबके आंखों में वो नमी आती है। तो आप ये इंडियन आर्मी

0: के हर इवेंट्स में मोस्टली इस गाने को प्ले होते हुए ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ ये जब इमोशंस लाने के लिए इन एक्टर्स को आर्मी के बैकग्राउंड से गुजारा गया था, उन मुश्किलात कह सकते हैं हालातों से गुजारा गया था, जैसे कि इंडियन आर्मी या जिन जिन तरह से वो रहती हैं दूर घरों से, वो सारे हालात उनको उन हालातों से गुजारा गया था इन एक्टर्स को, ताकि उनके चेहरे पर भी वो शिकन वो फील आ सके। तो ये होता है एक्चुअल में, अगर आपको किसी भी की चीज़ को दर्शाना हो या कैरेक्टर को, तो आपको उस चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं और एक गाना आप सभी के सामने लाते हैं, लेकिन उससे पहले एक एड ब्रेक के बाद गाने की बात करेंगे। टॉप 10 में आज 10 वो गाने जो कुछ ना कुछ स्टोरी लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं, ठीक है ना? तो एंजॉय, स्टे ट्यून्ड। ये रहा एड ब्रेक आपके लिए।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

यकीन जानिए यार, शाहरुख खान को ऐसे ही शाहरुख खान नहीं कहते। इन सब फिल्मों को देखने के बाद, इन सब गानों में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, मुझे लगता है यार शाहरुख खान से ना प्यार करने वाला भी प्यार करने लगेगा। जी हाँ, बाजीगर मूवी का ये गाना आपने सुना क्या है, ये काली काली आंखें। और ये गाना यकीन जानिए शाहरुख खान की जो कूल डांसिंग स्टार की जो इमेज है, उसको इसने इमेज को क्रिएट कर दिया था, सबके सामने ला दिया था। उसके बाद से उनको डांसिंग जो स्टार कह सकते हैं या यू कहें, इस तरह के जो गाने थे वो मिलने लगे थे। और इसका जो हुक स्टेप था वो 90s में बहुत ज़्यादा कॉपी हुआ, तो ये हुआ इस गाने के साथ। फिलहाल अगले गाने को आप सभी ने बहुत सुना है, और ये किसी फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन इस गाने को अगर आपने नहीं सुना है तो आप 90s के किड तो हो ही नहीं सकते। जी हाँ, सुनिए।

सकता है, 100% आपने ये गाने को सुना होगा। जी हाँ, मेड इन इंडिया, अलीशा चनाई ने ये गाना 1995 में एक एल्बम में लॉन्च किया था। उस एल्बम का नाम भी था मेड इन इंडिया। और ये गाना आप सभी ने सुन रखा ऑब्वियसली। तो इस नॉन फिल्मी सॉन्ग को आप सभी ने इतना पसंद किया था, इतना हिट हुआ था कि भाई ये बॉलीवुड के जो सॉन्ग थे उस वक्त के जो ट्रेंडिंग सॉन्ग थे उनको ये कॉम्पिटिशन दे रहा था। और एक कहना था बॉलीवुड के बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये बोला था कि शायद आगे चलकर के जो नॉन फिल्मी सॉन्ग हैं जो सिर्फ एल्बम्स में आते हैं वो भी टक्कर दे सकते हैं ऐसे हमारे सॉन्ग्स को। तो उन्होंने उस वक्त बड़ा एक अहम फैसला लिया कि भाई हमें इस कॉम्पिटिशन में रहना है।

इंडिकेशन दे रहा था और एक कहना था बॉलीवुड के बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये बोला था कि शायद आगे चल करके जो नॉन फिल्मी सॉन्ग हैं जो सिर्फ एल्बम्स में आते हैं वो भी टक्कर दे सकते हैं ऐसे हमारे सॉन्ग्स को। तो उन्होंने उस वक्त बड़ा एक अहम फैसला लिया कि भाई हमें इस कंपटीशन में रहना है तो नॉन फिल्मी सॉन्ग्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा। फिलहाल इस नॉन फिल्मी सॉन्ग में एक चीज़ और हुई थी कि अलीशा चनाए पर ही पूरा ये गाना फिल्माया गया था। बहुत कम टाइम पर इसमें दो जो एक्टर्स एक एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को लाया गया था उन पर कैमरा आया था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सिंगर को ही इस गाने में देखा हुआ है। अगला गाना बहुत ही शानदार गाना और आप यकीन जानिए मजा आ जाएगा आपको सुन करके। इनको नहीं पहचान पाए तो आप कुछ नहीं पहचान पाए। मजा ये कौन है ये पहचान गया ना। हाँ

0: पहचान लिया था ना अपने गाने, बिल्कुल सैफ अली खान साहब यूथ आइकन बन गए थे इस गाने के बाद यार। इन गाने में जिन्होंने जिस तरह उन्होंने एनर्जी अपनी दिखाई थी और जिस तरह उन्होंने गाने में परफॉर्म किया था, कमाल था। और सबने बड़ा पसंद किया था, 90s की पार्टी का ऑलमोस्ट ये सॉन्ग ऐसा था जो मैंडेटरी था, मतलब बजना ही बजना था। जी हाँ, ऐसे ही कुछ गाने हैं जो आप सभी के साथ जरूर बजेंगे। फिलहाल एक एड ब्रेक, और एड ब्रेक के बाद एक और गाना आप तक पहुंचाएंगे और उसके पीछे की स्टोरी जरूर बताएंगे। ये एड ब्रेक आप सभी के लिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर, हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 1942 वाला स्टोरी, ये आई थी 1994 में, एक लड़की को देखा ऐसा लगा। इस फिल्म का गाना था और इस गाने को आप सभी के सामने खूबसूरत अंदाज में कुमार सानू ने गाया था। और ये कहते हैं कि कुमार सानू की ये जी खूबसूरत रोमांटिक परफॉर्मेंस थी और ये एक लड़की की खूबसूरती पर एक पोइट्री लिखी गई थी, उस पर यह पूरा डिस्क्राइब किया गया था। जी हाँ, ये सोचिए, इस गाने को बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया गया था। फिलहाल एक एड्रिक एड्रिक के बाद एक और प्यारा सा गाना आप सभी के सामने लाते हैं बिना देर के।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, पहला नशा पहला खुमार, उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में, जो जीता वही सिकंदर मूवी से ये गाना। और इस गाने की स्पेशल जो खास बात थी वो थे इसके स्लो मोशन इफेक्ट। जी हाँ, क्योंकि जब आराम आराम से लहराते हुए ये लोग डांस कर रहे थे, ये यकीन जानिए उस वक्त VFX नहीं था, तो कैसे कैसे पूरी टीम के साथ एक्टर्स को धीरे धीरे करके स्लो मोशन करना पड़ता था। आज तो क्या होता है, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, VFX हैं, तो सबको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त सारे एक्टर्स भी उसी सीक्वेंस में धीरे धीरे मूव कर रहे थे, स्लो मोशन कर रहे थे, जैसे जैसे मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस कर रहे थे। तो ये कैमरा टेक्निक और मैजिकल फील से बनाया गया था ये गाना, बॉलीवुड का खूबसूरत आइकॉनिक लव सॉन्ग्स में ये गिना जाता है। एक और लव सॉन्ग है जो 10वें नंबर का गाना है, वो मैं आप सभी को पहले थोड़ा सा हल्का सा सुनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। जी हाँ, सुना ये गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना है शाहरुख खान का, सरसों की खेतों वाला वो सीन इतना फेमस हुआ कि आज भी ये लोग पंजाब जाकर ये पोज रिक्रिएट करते हैं। तो जिसके भी दिमाग की उपज होगी वो कमाल के सीन की, वो काबिले तारीफ थी। ये इंडियन गाना इंडियन रोमांस की पहचान बन गया। यस, और अब मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत, ये गाना आखिरी गाना 10वां गाना आप सभी के रेडियो सेट्स पर, मिलते हैं शाम अवध में बिना देर के। मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ, कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

पर शाम के 6 बज चुके हैं। सुनिए एफएम समाचार। नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाए। अयोध्या में स्क्रैप और बेकार सामग्री से रामायण की

गाथाओं को जीवंत रूप दिया जाएगा। मौशीवाला के पास नगर निगम की ओर से 17,72,00,000 रुपए की लागत से भव्य लवकुश पार्क विकसित किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नए आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये पार्क कचरे से कला थीम पर तैयार होगा, जहां स्क्रैप धातु और बेकार सामग्री से रामायण के ऐतिहासिक प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही पार्क को शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए यहां विशेष वर्कशॉप और एजुकेशनल टूर आयोजित किए जाएंगे। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि ये परियोजना अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने आज गोधना मोड़ स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं को खराब ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज और बिजली कटौती से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों को के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ईद उल अजहा पर्व का मर्म त्याग सेवा का की भावना है। ये पर्व गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि ये पर्व समाज में सद्भाव, एकता और सामाजिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
1: बिल्कुल आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ, 6:40, माफ कीजिएगा 6:04 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुका हूं शाम अवध, और ये प्रोग्राम आप सभी को अवध की पूरी जानकारी देता है। तो अवध में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या नई चीजें होने वाली हैं, मौसम का क्या हाल रहने वाला है, और साथ ही साथ जी हाँ क्या होने वाला है रोड्स पर निकलने के बाद, आप जाम में फंसने वाले या नहीं, इन सारी चीज़ों की अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा। अगले कुछ घंटे हम आपको बेहतरीन गाने भी सुनाएंगे, गाने आपके फेवरेट तो होने वाले हैं पक्का पक्का, मैं ये तो श्योर कहता हूँ कि आपके गाने ये पक्का आपके फेवरेट होने वाले हैं। और जो खबरें रहेंगी या जो जो बातें रहेंगी वो भी आपके काम की ही रहेंगी, तो कहीं जाने की जरूरत है कि आपको जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। ऐसे ठंड ऐसी जो ठंडक है ना जो आपको बाहर मिल रही है उसमें आप कहीं ना ही जाएं तो बहुत बेहतर है। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोशिश करिए अगर काम नहीं है बहुत ज़रूरी तो मत निकलिए, वैसे शाम में थोड़ा आराम मिल जाता है ना, होता है ना। तो फिलहाल चलिए गाना आप सभी को सुनाते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक है, एड ब्रेक सुन लीजिए, फिर हम गाना भी आप तक पहुंचाएंगे। ये लीजिए

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जन्नत फिल्म का ये गाना सुना आपने अपने रेडियो सेट पर, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। इमरान हाशमी और सोनल चौहान इस गाने में एज एन लीड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस थे। के एंड प्रीतम की आवाज में ये गाना था। आप सुन रहे 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 6:10 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में और शाम अवध प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अब अगर देखिए शाम अवध है तो अवध की शाम कितनी गर्म है आप सभी जानते हैं फिलहाल, तो है ना, कुछ बताने की जरूरत है नहीं मुझे। और आज मैं जो प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा वो मैं कुछ ऐसे ही न्यूज से करूंगा जिसमें आपको थोड़ा, इवन हम सबको थोड़ा आराम मिले। तो भाई कल से थोड़ा मौसम बदलेगा और 8 डिग्री तक जो पारा है वो लुढ़केगा। जी हाँ, तपती दोपहरी से आपको लू जो चलती है उसकी चपेट में आने से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे मौसम विभाग का कहना है कि भाई 28 से 30 मई तक शहर समेत पूरे प्रदेश में आंधी गरज चमक के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भाई पारा थोड़ा लुढ़केगा तो आराम मिलेगा भाई, देखिए मिलेगा तो भाई। और यकीन जानिए मैं उस दिन अभी हाल ही में सफ़र कर रहा था, तो मैं जरवल और ये इधर था गोंडा साइड, तो वहाँ पर काफ़ी बारिश और आंधी आई बहुत तेज़, और काफ़ी देर तक बारिश हुई है। तो वहाँ तो बड़ा अच्छा मौसम था उस वक्त, हम तो बड़ा मज़े में थे। हमें लगा था कि यार हम लखनऊ पहुँचेंगे तो लखनऊ में भी ऐसा मौसम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था हमारे साथ। फिलहाल अगली क्या न्यूज़ है अच्छी वो लखनऊ वालों को पता चलने वाली है, लखनऊ वालों को फ़ायदा मिलने वाला है। क्या है भाई न्यूज़ आपके लिए वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना आप सभी के साथ रेडियो सेट पर शेयर करेंगे।

0: कभी सिंह फिल्म से ये गाना सुना बेख्याली। 6:17 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, धड़कन लखनऊ की है तो भाई आप सभी की, हम सभी की धड़कने हैं और हम सभी लोग मिल करके अच्छी अच्छी खबरें को जान लेते हैं। अब आप कहोगे यार अच्छी खबर कौन सी है भाई, बताओ जल्दी। तो बंद होगा मेट्रो का स्मार्ट कार्ड, ये कौन सी अच्छी खबर है आप यही सोच रहे होगे ना। जी हाँ, अच्छी खबर इसके बाद में बताऊंगा। जी हाँ, बंद होगा मेट्रो का स्मार्ट कार्ड, लेकिन लागू किया जाएगा मोबिलिटी कार्ड। जी हाँ, एक ऐसा कार्ड जो मेट्रो में भी चलेगा, बस में भी चलेगा, टोल में भी चलेगा, छोटे मोटे पेमेंट्स भी आप आराम से दुकानों पे कर सकोगे। तो ये लॉन्च करने की तैयारी में है हमारी मेट्रो, तो जल्द ही आपको ये मेट्रो का कार्ड जो है, कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है, जिसे NCMC बोला गया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, सो NCMC, ये कार्ड आपको जल्दी ही मिलने वाला है। ये वाईफाई कार्ड होगा और अगर आप क्रेडिट कार्ड या रुपे कार्ड्स यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा रुपे कार्ड्स होते हैं जो आपकी कहते हैं ना, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं UPI से रिलेटेड वाले, वो आप उसी से करते हैं। तो उसी तर्ज पर ये बनाया जा रहा है कार्ड, और वाईफाई से रिलेटेड वाईफाई होगा इस कार्ड में, यानी आपको कार्ड कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ टैप किया और पेमेंट हो गया। हाँ, तो ये आप टोल पे भी कर सकते हैं, टोल भी इससे कटेगा, आप इससे लिंक कर देंगे अपना टोल तो, और बस में अगर आप जाते हैं टिकट लेते हैं तो, मेट्रो में तो ऑब्वियसली आप यूज़ ही कर सकते हैं। छोटे मोटे पेमेंट्स भी अगर आपको करने हैं, ख़रीदारी करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये सारी चीज़ें हो सकेंगी आपके कार्ड से। अब ये कार्ड आपको जल्द ही मिलने लगेगा मेट्रो के अलग अलग स्टेशन पर, तो मोबिलिटी कार्ड का यूज़ कीजिएगा। पैसे तो आप नहीं खर्च करने हैं, पैसे नहीं दे रहे हम, वो हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उस कार्ड में पैसे आपके ही चाहिए। फिलहाल लेकर हैड ब्रेक के बाद एक और खूबसूरत गाना आप सभी के सामने लाते हैं। 6:19 होने वाले स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।

अभी आप बोलोगे यार इमरान हाशमी के गाने लगातार सुनाए जा रहे हो, एक के बाद कुछ ना कुछ है। इमरान हाशमी के गाने, गाने ही ऐसे होते थे यार, मुझे गाने बहुत पसंद है। जरूरी ये गाना एक मैंने सुनाया है, पिछले घंटे भी मैंने एक गाना सुनाया था, बहुत मजा। मतलब इस घंटे भी एक और गाना सुनाया था, जरा से दिल में दिए जगह। इमरान हाशमी की मूवी उससे ज्यादा उनके गाने फेमस होते थे, है ना। फिलहाल अब कुटाई बता देता हूँ, 6:26 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध, अवध की शाम में अवध से जुड़ी हुई बातें, कुछ ऐसी न्यूज जो आपको जानना बेहद जरूरी। तो पहले बता दें, कल बकरीद है यानी ईद उल अज़हा, और उसकी वजह से कल छुट्टी रहेगी। पहले वो छुट्टी आज थी, जी हाँ, यानी क्योंकि चांद के हिसाब से डिसाइड होता है कि बकरीद कब होगी। तो पहले ये था कि 27 को होगी, तो 27 को तो हुई नहीं, तो 28 को है अब। तो उसके हिसाब से कई ऐसी चीज़ें थी जिन पर जो छुट्टी की वजह से प्रीपोन की गई हैं या तो आगे बढ़ा दी गई हैं। जी हाँ, तारीखों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जैसे कि पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट जो 28 मई को थे यानी कल छुट्टी के दिन, वो अब 27 मई को कर दिए गए हैं, या उन अपॉइंटमेंट वालों को आगे का मौका दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर लें। जहाँ जिनकी अपॉइंटमेंट 28 मई को थे यानी कल अचानक छुट्टी हो गई, 27 को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट नहीं दिए गए थे क्योंकि पहले से छुट्टी का अंदेशा था, लेकिन फिर उनको प्रीपोन किया गया। तो ये अगर आपका अपॉइंटमेंट 28 मई को है तो आप उसे शेड्यूल कर सकते हैं, कल फिलहाल छुट्टी रहेगी। पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा है वो अब 31 मई को होगी, जिनकी 28 मई को थी, यानी जो 28 मई को थी वो अब 31 मई क्योंकि कल हो गई छुट्टी। आगे बढ़ते हैं, AKTU की भी परीक्षाओं को टाला गया है, आगे बढ़ाया गया है। जो 28 मई को परीक्षाएं थी वो अब आगे बढ़ा दी गई हैं और शेड्यूल जल्द ही विश्वविद्यालय आपके सामने लाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये न्यूज़ आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। फिलहाल एक गाना भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिना देर के मैं गाना पहुंचाता हूँ आप सभी के सामने। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है यार, ये आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, ये आवाज़ आपको भी बहुत पसंद है। बहुत ही सिंपल तरीन आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, एकदम ग्राउंड पर रहते हैं। सुनिए आवाज़, फिर बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है ना।

यार ये आवाज ना दिल में उतर जाती है कानों के जरिए, यकीन जानिए बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक है, पहचान गए ना कौन है कौन है। जी हाँ, अरिजीत सिंह साहब की बात कर रहा था। जी हाँ अरिजीत सिंह यार एक ऐसी आवाज़ के मालिक है। पहले तो यार ये बिल्कुल आवाज़ इनकी डिफरेंट थी, फिर उन्होंने अपनी आवाज़ को बड़ा मॉडर्नाइज किया और बहुत खूबसूरत आवाज़ अपनी बनाई, और उसके बाद जितने भी गाने गाए तुम ही हो से शुरू हुए, ये लाइमलाइट में आया, और उसके बाद फिर ये लाइमलाइट में आते गए आज इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर इन्हें किसी एक मंच पर बुलाया जाए कहीं पर गाने के लिए तो इसके लिए वो लाखों रुपये चार्ज करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना लाखों रुपए चार्ज करने वाला इंसान, अगर आप इनके सोशल मीडिया पर रील्स देखें ना, तो ये कैसे आपको बंगाल की गलियों में और जहाँ इनका पुश्तैनी घर है वहाँ पर ये रहते हुए नजर आएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। सोचिए आप कहेंगे यार इतना बड़ा आर्टिस्ट मुंबई में बड़े से फ्लैट में रहता होगा, बड़े ऐशो आराम BMW से चलता होगा और डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल से डाउन टू अर्थ बंदे हैं, मतलब इन्हें स्कूटी से झोला लेके चले जाते सब्जी लेने, और ये मतलब इनकी रील देख करके मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा इंसान, इतना पॉपुलर इंसान जिससे यार कोई मिलना चाहे वो इतना डाउन टू अर्थ, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ये तो सच बात है, तो सीखेंगे लेकिन सीखते ही कहाँ हैं, हम तो बस अपनी धुन में रहते हैं हम सभी लोग। चलिए ये तो बातें हुई अरिजीत सिंह की, 6:35 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, अगले गाने की ओर चलते हैं। शामे वक्त चल रहा प्रोग्राम, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। एक न्यूज़ ज़रूर बता दूं हम लखनऊ वालों को, और लखनऊ वालों के साथ साथ नकहा वालों को, यानी नकहा एक जगह का नाम है, डालीगंज से नकहा जंगल पैसेंजर शुरू, अच्छा जंगल वाली पैसेंजर ही है, तो एक रेलगाड़ी की शुरुआत की गई है लखनऊ से नकहा जंगल की ओर। ये पिछले 6

0: इस साल से बंद थी, अभी फिलहाल इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो भाई गोंडा साइड के लोग या उधर जितने भी लोग रहते हैं जो नखा जंगल पैसेंजर का यूज करते हैं उनके लिए आसान हो गई है। डालीगंज से ये शाम 5:20 से चलेगी और अगले दिन सुबह 4:45 पर नकाह जंगल पहुंचेगी। वापसी भी इस ट्रेन की उस दिन होगी। नकाह जंगल से ये अगले दिन मतलब सुबह पहुंचेगी, फिर रात में चलेगी 11:10 पर चलेगी और सुबह 9:30 अगले दिन पहुंचेगी। तो भाई उस रूट के जो भी हमारे ट्रैवलर हों यानी जो लोग ट्रैवल करते हों उनके लिए आसानी हो गई है। फिलहाल एक एड्रेक, एड्रेक के बाद हम आपको एक और गाना सुनाएंगे सुंदर सा, कहीं जाइएगा मत बिना गाना सुने।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: इसलिए मैंने घर से, मतलब घर से और आपकी दूरी बढ़ी है ना, इसलिए मैंने जल्दी से रोड के हालचाल लेने के लिए, रोड पे कैसा ट्रैफिक है, हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास सिंह जी को कॉल मिला लिया और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार सर। बहुत बढ़िया है सर। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: जी हाँ, शाम 6:40 हो चुके हैं, हैवी लोड होगा क्योंकि लोग घर जा रहे होंगे, कल छुट्टी का दिन भी है। तो अभी क्या सिचुएशन है, किन किन चौराहों पे, जरा हमारे लिसनर्स को बता दीजिए सर।
1: जी सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को कि वर्तमान में जैसा कि पीक आवर्स का समय चल रहा है, तो ऐसे में हमारा जो ट्रैफिक लोड है वो लखनऊ अयोध्या मार्ग पर कमता से चिनहट की तरफ रहता है,
0: जी,
1: और इस दौरान जो है हम कोशिश करते हैं कि अगर अति आवश्यक न हो तो इस रोड के प्रयोग करने से बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अगर रायबरेली रोड की बात करें तो उतरेठिया पीजीआई वाला मार्ग थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट है तो सर। और दूसरा अगर हम पीजीआई के

0: और इस दौरान जो है हम कोशिश करते हैं कि अगर अति आवश्यक न हो तो इस रोड के प्रयोग करने से बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अगर रायबरेली रोड की बात करें तो उतरेठिया पीजीआई वाला मार्ग थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट है तो सर। और दूसरा अगर हम पीजीआई के पास में ही अगर अगर जाएं तो हमारा जो शहीद पथ वाला एरिया है वहां पर भी थोड़ा सा ट्रैफिक लोड है। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप अगर इन रोडों पर जाना चाह रहे हैं तो कृपया वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। अन्य अगर मार्ग की बात करें लखनऊ कानपुर मार्ग की बात करें तो वहां पर यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। शहर के अंदर चूंकि अमीनाबाद जो हमारा की बाजार वाला एरिया है यहाँ पर पैदल आवागमन अधिक रहता है तो इससे वहां पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो अगर आप जो है सवार चार पहिया से हैं तो कृपया अमीनाबाद वाले मार्ग को अवॉइड करें शाम के समय में, और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचने के लिए आप कोशिश करें शहर के मुख्य मार्गों का प्रयोग उस तरह से करें जो हमारे ज्वाइंटिंग मार्ग है, जैसे हमारा ग्रीन कॉरिडोर हो गया आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसान पथ का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य शहीद पथ का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य मार्गों से जुड़ने वाले तो इन मार्गों का प्रयोग करेंगे तो आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि कहीं आपको मेडिकल इमरजेंसी है, अगर लगता है कि कहीं आप यातायात दबाव में आपको परेशानी हो रही है अपने गंतव्य तक जाने में सुगमता चाहिए तो आप तत्काल हमें हेल्पलाइन हमारा नंबर है 94-54-51-55 पर हमसे संपर्क कर आप सुविधा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी सुगम यातायात हेतु प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपकी इन बातों से काफ़ी आराम मिलता है लोगों को, काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो इन रास्तों को अवॉइड करें। धन्यवाद हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए।
0: धन्यवाद, आभार सर।
1: तो हमारे साथ थे ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास सिंह जी, उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने काम की जानकारी दी। मैं आपको एक और काम की जानकारी देता हूँ, क्या है आजकल क्या हो रहा है। मैं खुद या मेरे जैसे हजारों लोग ये सोचते हैं कि भाई दिन के समय ना निकला जाए, शाम के समय निकला जाए, क्योंकि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद और उसी वक्त हम सब निकलते हैं घर से अपने जरूरी कामों के लिए, क्योंकि हमें दिन की गर्मी से बचना भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मोस्टली अगर आप ये चीज कर सकते हैं कि आप टू व्हीलर का इस्तेमाल ज्यादा कर लें, क्योंकि कई बार ये होता है ना, हम फैमिली को लेकर के निकलते हैं मार्केट में शॉपिंग करने तो एक साथ इतनी फोर व्हीलर पहुंच जाती है तो रास्ते जाम होना बट ऑब्वियस है। एक चीज और एक चीज मैं यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि अभी हाल आज की खास बात करूं मैं तो आज क्या है कि छुट्टी होने वाली है, मतलब आज के बाद कल छुट्टी है। तो मोस्टली लोग जो घर लखनऊ में लोग काम करते हैं वो घर से घर को जाएंगे, वापस जाएंगे अपने अपने सामान के साथ, तो मोस्टली उन चौराहों पर वो पहुंचेंगे जहां से लखनऊ के बाहर जाया जाता है, जैसे कमता है, जैसे उतरेठिया है, कानपुर रोड का चौराहा है, नहर वाला, तो यहां पर भीड़ ज्यादा होगी क्योंकि सभी लोग अपने घर जाने के लिए, क्योंकि कल छुट्टी है बकरीद की और आगे सैटरडे संडे भी आ रहा, तो मोस्टली लोग गैप करेंगे कि लंबी छुट्टी को लेकर के भागेंगे, तो वो भीड़ काफी होगी वहां पे, तो आप अगर अवॉइड करें तो बहुत ही बेहतर। बाकी मर्जी आपकी है, गाड़ी आपकी है, टाइम भी आपका है, मेरे पास तो सिर्फ ये है कि आप गाड़ी में चल रहे हैं, ये जहां पर भी है मोबाइल में अगर आपने गाना लगा लिया है तो मैं आपको गाना सुना सकता हूँ। ये देखिए गाना आपके लिए है, अगर आप ट्रैफिक में फंसे तो इस गाने को एंजॉय कीजिए। आप हैं शादाब के साथ 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब आप सभी के साथ, और प्रोग्राम चल रहा था अभी तक, अभी भी चल रहा है शाम आबाद। तो शाम आबाद में मैंने आपको ट्रैफिक अपडेट दे दी, मैंने आपको काफ़ी सारी अपडेट दे दी कि भाई आप क्या चीज़ करें क्या चीज़ ना करें, और ख़ास अपडेट कि भाई मौसम बदलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहली न्यूज़ मैंने आपको यही बताई थी कि मौसम 28 से 30 मई तक बदलेगा, कुछ डाउन पड़ेगा, ऐसा बोलना है हमारे किसका, मौसम विभाग का, मैं ही क्या करूँगा बोल करके। फिलहाल एक और चीज़ बतानी थी, इतिहास। आज देश का, आज ही के दिन देश का पहला एक्वेरियम खुला था। जी हाँ, आज ही के दिन 1951 में, यानी 27 मई 1951 में ही आज के दिन मुंबई में सबसे पहले पहला देश का एक्वेरियम खुला था, और मछली घर जिसका उद्घाटन किया था, जिसको हिंदी में मछली घर बोलते हैं। वहाँ पर बड़ी दुर्लभ टाइप की मछलियां, समुद्री जीव लाकर रखे गए थे ताकि लोग उसे आकर देख सके। और 1951 में अगर लाया गया हो तो सोचिए कैसा रहा होगा, तब के बच्चे कैसे देख रहे होंगे, क्या कमाल उस वक्त होगा, है ना। फिलहाल कमाल तो आप करते हैं भाई, हाँ, जब आप फोन मिलाते हैं और हमसे बतियाते हैं, बहुत ढेर सारी बातें करते हैं और अलग अलग बातें कर करके अलग अलग गाने सुनते हैं, तो हम भी उस पल का इंतजार करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई आप हमें फोन करें और हमसे बातें करें और हम आपको आपके फेवरेट गाने सुनाएं, जिसके लिए हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई अगले प्रोग्राम में बिल्कुल हम आपके साथ जुड़ें, तो 7 बजने वाला है, 7 से 8 हम आपके बीच रहेंगे। बिना देर के आप फुल ऑन हमारे कॉल नंबर पर, अभी भी कॉल आ रही है, देखिए लगातार मैं देख रहा हूँ कॉल आती जा रही है पहले से। मेरी एक रिक्वेस्ट उनसे रहेगी जिनकी कल कॉल मिली है या परसों कॉल मिली है, तो थोड़ा टाइम दें, दूसरों को भी मौका दें, दूसरों को भी ये खुशी आने दें कि उनकी भी कॉल लगी। तो अगर आप आज एक दो दिन नहीं लगाएंगे, दो दिन बाद लगाएंगे, तो कोई हम ना बुरा मानेंगे, ना ही कोई रेडियो सुनने वाले बुरा मानेंगे। तो अगर आप दूसरों को भी मौका दें तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरा ये मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, जो भी कॉल मेरे पास आएगी मैं ज़रूर बात करूंगा। 0522-2238-52 यह नंबर, इस नंबर पे कॉल करना, मेल भी कर देना। मेल अगर करोगे भाई तो मेरे को बता देना, मैं मेल भी आपका पढ़ दूंगा। FM 100.7 आकाशवाणी, जी हाँ, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, इस पर आप हमें मेल कर देंगे तो हम वो भी पढ़ लेंगे आपका मेल भी। बातें बहुत ढेर सारी करनी थी लेकिन अब टाइम तो बचा नहीं है, टाइम हो गया है 6:55, और एक गाना आप सभी के रेडियो सेट्स पर आपको सुनाते हैं बिना देर के, कहीं जाइएगा मत, स्टेडियम विद 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आप सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर पीलीभीत में गोमती नदी से जुड़ी विकास योजनाओं एवं नदी के उद्गम स्थल के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण और समाज कल्याण स्थायी समिति की समीक्षा बैठक हुई। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बस्ती में आज कुआनो नदी में पूजा पाठ के बाद सफाई अभियान की शुरुआत गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने की। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा नदी के तट पर वृक्षारोपण का कार्य भी कराया गया। लखनऊ में जनगणना 2027 के तहत जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा मकान सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने जोनल अधिकारी एवं सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। झांसी में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने आज गोधना मोड़ स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अयोध्या में स्क्रैप और बेकार सामग्री से रामायण की गाथाओं को जीवंत रूप दिया जाएगा। मऊ शिवाला के पास नगर निगम की ओर से 17,72,00,000 रुपए की लागत से भव्य लवकुश पार्क विकसित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कल बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च के आदेश दिया। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। आज कई जगहों पर तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहा। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सभी के लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो FM शुरू हो चुका है। 7:04 हो चुके हैं और पहले कॉलर कौन हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए जान लेते हैं। हेलो।
6: हेलो,
5: नमस्कार, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है?
6: जी, मैं वीरपाल जयपाल, ग्राम पोस्ट लगेफर, जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ।
5: वीरपाल
6: जी,
5: सही सुना मैंने? वीरपाल जी कहाँ से बोल रहे हैं?
6: जी लकेफर गांव, जिला लखीमपुर खीरी पे।
5: लखीमपुर खीरी से लकेसर गांव से, कैसे हैं वीरपाल जी?
6: जी
5: कैसे हैं आप?
6: जी बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
5: गर्मी का आनंद ले रहे हैं?
6: जी
5: पहली बार कॉल लगा है आपका?
6: जी पहली बार लगा।
5: अरे वाह, और आज पहली बार लगा और पहले कॉलर हैं आप, पता है आपको? बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस बात
6: जी। मैं गाना सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।
5: बिल्कुल सुनाएंगे आपको, और किसको आप सुनाना चाहेंगे, उनका नाम लेना चाहेंगे?
6: जी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं।
5: बहुत अच्छी बात है, तो मैं चाहूंगा कि आपका फेवरेट गाना ये सब तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद भीमपाल जी।
6: नमस्कार
5: हमें कॉल करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भीमपाल जी, जो पहले कॉलर थे। अगर आपको भी कॉल करनी है तो भाई 37852 जल्दी से मिला लीजिए 2875 पर। और ये गाना, रुकिए ये गाना पहले सुन लीजिए, कहीं जाइएगा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब आप सभी के साथ, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई फोन लाइन पर भी है। कौन है बताइए। हेलो
4: हेलो सर जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
3: नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कौन बात कर रहा है, कहां से बात कर रहा है?
4: जी सर, FM रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
3: क्या बात है पिंकी रिंकी, आपका स्वागत अभिनंदन है एक बार फिर से। और मुझे लगता है
4: बहुत थैंक यू और शुक्रिया सर कि आपने मेरी कॉल रिसीव की इसके लिए।
3: अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज बनता है, और कॉल हमें, मैं बता रहा हूँ, मतलब हम क्या कोई भी होगा रिसीव करना उसका बनता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसकी कॉल आ रही है। हम रिसीव हर कॉल करते हैं।
4: लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है आपके चैनल पे।
3: नहीं नहीं बिल्कुल, हम चाहेंगे कि कभी गलत ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा कॉल आ रहा है। फिलहाल पिंकी एंड रिंकी बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
4: सर मूवी का नाम है राज और सॉन्ग के बोल हैं आपके प्यार में हम संवरने लगे। और सर सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हैं और इतने दिनों से आप थे कहाँ?
3: बिल्कुल, मैं एक लंबे अंतराल के बाद आया हूँ, बहुत दिनों बाद हमें मौका मिला है कि रेडियो पर आने का।
4: इसीलिए तो सर हमने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप इतने दिनों के बाद कार्यक्रम।
3: गर्मी का आनंद ले रहे थे, गर्मी बहुत थी।
4: बहुत अच्छा करते और गीत भी बहुत अच्छे बजाते हो।
3: आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया पिंकी रिंकी। बस लेकिन बस ये है कि गर्मी का आनंद ले रहे थे, गर्मी बहुत है, आराम कर रहे थे। जैसे ही मौका मिलता है हम जरूर आते हैं।
4: आपका कार्यक्रम कंटिन्यू सुनती हूँ, जब भी आते जब भी आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, पर ये होता है कभी मुलाकात हो पाती कभी नहीं हो पाती।
3: नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, आप सुने हमारे लिए ये जरा नवाजी है, आपका एहसान है, और अगर आप इस तरह से सुनते रहेंगे तो हमारी मुलाकात तो होगी होगी ना।
4: बहुत थैंक यू, आप इतनी मेहनत से कार्यक्रम लाते हो करते हो। और सर हम अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से लीजिए नाम
4: जी। सबसे पहले तो सर आपको गाना डेडिकेट करते हैं, और विजय श्रीवास्तव सर को भी डेडिकेट करते हैं।
3: बहुत बढ़िया,
4: उनसे गुजारिश करते हैं कि सर कार्यक्रम में जल्दी आए, काफी उनका अंतराल लंबा हो गया।
3: जी जी जी जी, पहुंच गई उन तक आवाज, जरूर पहुंची होगी।
4: सर मेरी दोस्त है तमा परवीन, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, पूनम दीदी, गुंजन तिवारी, मोहम्मद फैज भाई, जावेद अख्तर सर, वकील अहमद भाई और तिवारी अंकल, और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को, साथ में अपने भाई दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही।

0: विस्तार सुनना चाहेंगे सर गीत।
1: क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और ये आपका गाना।
0: सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू
1: थैंक यू।

0: कई बार ना आप लोग ऐसे ऐसे गाने रिक्वेस्ट कर देते हो कि चाह के भी मैं गाने आधे नहीं प्ले कर पाता, पूरा गाना प्ले करना ही पड़ता है, मुझे बहुत पसंद आते हैं गाने। फिलहाल लग रहे कॉलर कौन है, लाइन पर जोड़ लेते हैं जरा। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?

0: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या बात है,
0: बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज से भी लग रहा है बहुत बढ़िया है।
0: आपने मेरा कॉल रिसीव किया इसके लिए थैंक यू सर,
1: बहुत शुक्रिया। मैं कौन होता हूँ कॉल कट करने वाला आपका?
0: सर हेलो सर, कल बकराईद है, हमारे घर पे आना जरूर। मेरी आवाज पहुंच रही है, सबको बुला रहे हैं, सब लोग
1: सिवाई खाने, दही फुल्की खाने, सब लोग पहुंचेंगे, बिना खाए पिए हम लोग निकलेंगे नहीं। अगर हम वहां आ गए तो सोचिए मेरे घर वाले मेरे को नहीं छोड़ेंगे ना। तो कल नहीं परसों, ठीक है ना?
0: हाँ, सर आना हम आप
1: बिल्कुल, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। फिलहाल शमा परवीन जी, ये जल्दी से बताइए कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे?
0: गाना सुनेंगे कुर्बान मूवी से तू जब जब मुझको पुकारे, और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, गाना आपने तू जब जब पुकारे मुझको पुकारे, ये गाना आप डेडिकेट कर दीजिए जिसको भी करना
0: है। सबसे पहले आपको
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: फिर बाबू अंसारी भाई हैं, मोहम्मद शब्दाम भाई हैं, अकबर अंसारी भाई, मोहम्मद फैज भाई, मोहम्मद अमीन भाई, बबलू यादव भाई और मोहम्मद आसिफ भाई, जावेद अख्तर भाई, वकील अहमद भाई और सत्यम कुमार भाई, विनीत कुमार भाई और गुलाब साहब की, साहब अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को, और मिंटू तिवारी अंकल को, और जी सुनील प्रकाश तिवारी अंकल को।
1: आज मिंटू तिवारी जी का कॉल आया नहीं, वरना मैं जब जब आता हूँ उनका कॉल जरूर आता है। फिलहाल इतने सारे नाम आपने ले लिए और सब
0: करके मुझे बहुत अच्छा लगा,
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैं एक चीज ये आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 7:18 हो चुका है, क्योंकि गाना मैं प्रादेशिक समाचारों के बाद, हाँ
0: समाचार के बाद
1: मैं प्ले करूंगा, वरना आपका गाना पूरा प्ले नहीं हो पाएगा। मैं खुद चाहूंगा कि आपका गाना पूरा प्ले हो और आप उस गाने को एंजॉय करो, ठीक है ना? हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया,
0: थैंक
1: यू सो मच,
0: बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शमा परवीन, जिन्होंने सीतापुर से हमें कॉल किया था। और इससे पहले प्रादेशिक समाचारों की ओर चलें, एक एड ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं प्रादेशिक समाचारों के बाद, गानों का सिलसिला और कॉल का सिलसिला वापस शुरू होगा, ठीक है ना? कहीं जाइएगा मत।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी

0: मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
2: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
4: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है। सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
5: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
6: FM रेनबो धड़कन लखनऊ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता। हर

0: और नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
0: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी हाँ, बिल्कुल, मैं मुझे खुद याद नहीं मैं कब आया था। अमन, थैंक यू सो मच हमें याद दिलाने के लिए। साथ ही साथ हमें दूसरा मेल जो किया है वो किया है राधेश्याम जी ने। राधेश्याम शाक के कासगंज, उन्होंने गुड आफ्टरनून बोला। शादाब सर, आपका प्रोग्राम बहुत प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत अच्छा है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू, इन्होंने लिखा हुआ है। फिर रामराज जी का आया है, शादाब भाई को प्यार बरादार, नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कोई गाना सुना दीजिए। तो जो भी गाना अगला आने वाला है वो आप सबके लिए है। बाबू अंसारी जी, अस्सलाम वालेकुम, शादाब सर बहुत शुक्रिया, इन्होंने भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपका। ये गाना सुनिए, उसके बाद हम हमारे कॉलर को लाइन पर लेंगे, ठीक है ना, बिना देर के। ये गाना आप सभी के लिए रेडियो।

0: वाह, ओहो, क्या बात है। ये गाना आप सभी के लिए, आप सभी को डेडिकेट किया था। अब चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है?
1: तालिब अंसारी बोल रहे हैं, बाराबंकी से।
0: तालिब अंसारी, जिला बाराबंकी से।
1: जी
0: तालिब, क्या करते हैं दोस्त?
1: जी हमारी तो पटेल के साथ सर जी, आपसे बात भी हो चुकी।
0: अच्छा, हाँ हाँ, याद आ गया।
1: सर जी आप थे कहाँ सर जी? पूरी गर्मी जाने वाली है, हम लोग तो खूब परेशान हो गए इस गर्मी में। आपको याद करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं आया हम लोगों की।
0: नहीं, बिल्कुल आई है भाई।

0: बीच बीच में आने की मेरी पूरी कोशिश रही, फिर कुछ ऐसे हालात हो गए कि आने की जहमत नहीं उठा पाए। खैर आज बात भी हो गई, मुलाकात भी हो गई आप लोगों से बहुत ढेर सारी। बताइए तालिब कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: हम बागमान मूवी का आगे सुनेंगे, कुछ तो होने लगा ये वाला गीत।
0: कुछ तो होने लगा
1: जी, पहले कभी मेरा हाल ना ऐसा हुआ, कुछ इसी तरीके का गीत है सर जी ये वाला गीत।
0: अच्छा
1: ये बहुत बढ़िया है सर जी।
0: हाँ पहले कभी में ये बताइए।
1: सब सर जी सब ठीक ठाक है?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं सब? अच्छा घर में सब लोग अच्छे
1: हैं? और जी घर में लोग अच्छे हैं।
0: बहुत बढ़िया,
1: सुनने वालों को भी और आपको भी सर जी ईद उल अज़हा की दिली मुबारक।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी आपके फैमिली को भी। ये गाना किसी को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी हमारे भाई हैं मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद साबिर और अकबर भाई सर जी, बस और सभी सुनने वालों को।
0: हाँ ये अच्छी चीज है, सभी सुनने वाले को। ठीक है तो तालिब थैंक यू हमें कॉल करने के लिए भाई, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ भाई। तो हमारे साथ थे तालिब जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की। इससे पहले कॉल आया था, उन्होंने ऑन एयर आके बात नहीं की, गया निशाद जी औरैया से उन्होंने एक गाने की फरमाइश की थी, वो गाना भी मैं प्ले करूँगा। उन्होंने बड़ा बढ़िया गाने की फरमाइश की है तो मैं ये दो गाने लगातार प्ले करूँगा, उसके बाद हम हमारे अगले कॉलर को लेंगे। तो सबसे पहले गया प्रसाद जी ये आपका गाना ये रहा लाते हैं और उसके बाद फिर तालिब का गाना।

0: जी बिल्कुल, कुछ तो होने लगा और मैं जब तक फोन नहीं उठाता हूँ मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत कुछ होने लगता है। 7:45 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। कर लेते हैं हेलो हेलो हेलो किसी से। हेलो भैया कौन है?
1: हाँ संजय कुमार यादव सर।
0: संजय कुमार यादव जी कैसे हैं आप? कैसे हैं संजय जी? कैसे हैं, कहाँ गए?
1: हम सरैया से बोल रहे हैं।
0: सरैया से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सरैया से बोल रहे हैं। सरैया ये कौन से शहर के पास पड़ता है, कुछ शहर का नाम बताइए।
1: ये जिला लखीमपुर में पड़ता है।
0: जिला लखीमपुर, बहुत बढ़िया, जिला लखीमपुर से बोल रहे हैं। और ये पहली बार कॉल मिला है संजय जी आपका?
1: जी सर पहली बार, बहुत दिन से मिलाई के रहा।
0: कोई बात नहीं, आप मिल गुआ, इतने दिन से मिलाए तो रहो लेकिन मिलत नहीं रहे, आज मिल गुआ
1: जी सर।
0: तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको?
1: हाँ बहुत बढ़िया लग रहा
0: है, मजा आ रहा
1: जी।
0: गाना जो बताया हो वही सुनियो।
1: गाना बता रहे सूरज को इस दिन से चंदापुरा से अपना कैसे है खुदा की खुदाई हमें आज मिल गई।
0: अरे गजब, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है हम आपका गाना सुनाए। किसे सुनाना चाहते हो आप?
1: जी जितने टीम वाले सबको सुनाना चाहते हैं।
0: जितने टीम वाले सबको, चलिए आपकी पसंद का गाना रेडियो पर लाते हैं, आप भी सुनो सब लोग सुने, ठीक है? धन्यवाद, हम तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ संजय जी थे, इनका गाना ये रहा, ये रहा, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, ये लीजिए।

0: बिल्कुल नहीं आएगी जुदाई भाई, कैसे आएगी, हम आने नहीं देंगे। हमारे साथ देखते हैं अगले कौन कॉलर आए हैं, वो जरूरी है जानना। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से।
0: विनीत कुमार जी, आप ऐसे आराम से बोल रहे हो जैसे लग रहा है आराम से चेयर डाले बैठे हो कमरे में, एकदम आराम से बात करेंगे जो करनी है ना।
1: बैठे तो थे
0: एकदम आराम से, बहुत आराम से बात करते हैं विनीत जी आप हैं
1: जी।
0: बहुत बढ़िया। विनीत जी क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: बहुत बढ़िया विनीत जी, घर में पीछे बच्चे बच्चे हैं तो शोर भी मच रहा है ना?
1: बच्चे तो हैं, दो हैं बच्चे।
0: क्या बात है, क्या नाम है उनका?
1: एक आदर्श, एक सिद्धार्थ गौतम।
0: आदर्श और सिद्धार्थ गौतम, क्या बात है। पढ़ाई करते हैं, छोटे हैं?
1: छोटे हैं अभी सर।
0: अभी छोटे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए गाना कौन सा सुनेंगे विनीत जी?
1: तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, नगीना फिल्म का है।
0: हमने किया ही नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं, हमने कहाँ बेचैन किया।
1: दोस्तों को शामिल कर सकते
0: हैं। जल्दी जल्दी जल्दी से करिए, मैं आपका गाना प्ले करता हूँ।
1: राजा सिमरी से है, ओमकार सीतापुर से है, समा परमी अंसारी सीतापुर से है।
0: क्या बात है।
1: संजय सरिया से है, सुनील गोकुलपुर से है।
0: बहुत बढ़िया।
1: कुमार मोर्य हरदोई से है, ममता हरदोई से है, सुरभि सीतापुर से, समा परमी अंसारी सीतापुर से, गुलक्षा सुंदीला से है, नवनीत हरकेश लखनऊ से है, और रिंकी टिंकी राय बरेली से है। आपको सर
0: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: मित्र एक कौवा महाराज है दहलरा के, उनको है।
0: बहुत बढ़िया, सबको डेडिकेट कर लिया। चलिए अब गाना सुनिए, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हाँ बिल्कुल, मेरा भी जी भरता नहीं है कि मैं आपको गाने सुनाऊं, और इतना सुनाऊं कि सुनाता जाऊं, मेरा ये प्रोग्राम को वाइंड अप करने का मन ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, क्या करे, प्रोग्राम को वाइंड अप करना ही पड़ेगा। 7:53 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, और आखिरी कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो,
1: दूर है आपसे मगर कोई गम नहीं, दूर है कभी आपको बुलाने वाले हम नहीं।
0: अरे वाह,
1: रोज मुलाकात हो चाहे ना हो तो क्या हुआ, आप दोस्तों की यादें मुलाकात से कम नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या ये बेहतरीन लाइनें बोलने वाले का नाम भी बता दीजिए भाई।
1: सादा भाई नमस्कार।
0: नमस्कार, सत्रीकाल। हाँ सत्रीकाल, सत्रीकाल। मिंटू चंदेल जी, डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका स्वागत अभिनंदन। क्या बात है, जलंधर पंजाब चले गए हम लोग।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत धन्यवाद, आपने हमें पंजाब दी धरती से कॉल किया, गुरुवदे धरती।
1: और आपको शायद ना हो, मेरी आज एफएम लखनऊ पर, एफएम रेनबो पर पहली बार कॉल लगी है।
0: अरे वाह, हमें दिल से बड़ी खुशी हुई। अगर पहली बार लगी है तो ये शुरुआत है, और इस शुरुआत को आगे बढ़ा के रखिएगा, कंटिन्यू करके रखिएगा।
1: बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि दूर बहुत है ना आपसे, इसलिए।
0: अरे नहीं, दूर नहीं, कॉल कहीं से दूर नहीं है, ठीक है ना।
1: सादा भाई, आपकी आवाज और आपका जो प्रोग्राम पेश करने का अंदाज है ना,
0: बहुत ही अच्छा है। बहुत धन्यवाद।
1: ऑनियर यही कहना चाहूंगा
0: जी, जी
1: जो आपका प्रोग्राम आता है रजनीगंधा,
0: जी
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि ओल्ड मेलोडी सुनिए उसमें गाने होते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
0: जी हम उस प्रोग्राम को आज से नहीं, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, और हम सभी उस प्रोग्राम के फैन हैं। वो प्रोग्राम वैसे ही आज भी है, क्योंकि आप सभी का प्यार है उसके लिए।
1: क्योंकि मैं आपको भी सुनता हूं, जो भी अपनी और बहनें आती है ना,
0: हाँ उनको भी सुनते हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हो आप।
0: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आज आखिरी कॉलर हैं आप, और आपका गाना भी प्ले करना है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, किसी को डेडिकेट करना है अगर आपको।
1: हाँ, डेडिकेट नहीं, मैं सिर्फ आपकी दोस्ती के लिए एक और शेर सुनाना चाहूंगा। गाना तो वेरी छोटा हो जाए, कोई बात नहीं।
0: जी सुनिए।
1: आपकी दोस्ती खास रहेगी, यादों की झलक दिल के पास रहेगी।
0: क्या बात है,
1: नहीं भूलेंगे आपको और आपकी दोस्ती को। मकसद
0: क्या बात है। मिंटू चंदेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहली बार कॉल करने के लिए, बड़ा शानदार रहा आपका, और बात करने का अंदाज बड़ा निराला है।
1: शुक्रिया, और आप गाना सुना दीजिए, फिल्म है गोरा और काला, रफी साहब की आवाज में।
0: बिल्कुल
1: कहानी बनेगी
0: ये आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, सत श्रीकाल जी। सो हमारे साथ मिंटू चंदेल जी, बिना देर के मैं अब टाटा बाय बाय बोलता हूं, क्योंकि अगली खूबसूरत आवाज आप सभी के साथ पहुंचने वाली है। ये गाना आप सभी तक, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। शादाब कहता है आप सभी को बाय बाय।

नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एआई और आधुनिक तकनीकों से युक्त ये व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनाएगी। यूपी एटीएस ने आज पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि टीम ने महकाब गगनदीप उर्फ गुरी सिंह, शाहरुख और मुशर्रफ को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों के सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने और संवेदनशील स्थानों की रेकी, युवाओं को जोड़ने और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के तथ्य सामने आए हैं। अयोध्या में रामलला के भोग प्रसाद को अब जल्द ही खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिलने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम अपने ऑडिट एजेंसियों ऑडिट एडिटोरियल क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड और एसडी ग्लोबल के साथ राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां रसोई और प्रसाद गोदाम का निरीक्षण किया गया। खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त मानिक चंद सिंह ने बताया कि आज प्री ऑडिट किया गया है, जबकि 28 मई को पोस्ट ऑडिट होगा। इसके बाद पूरी रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा, वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
3: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

ढलती हुई खूबसूरत सी शाम और आपका और हमारा साथ। और वो कहते हैं ना कि पसंदीदा शख्स आसपास हो या ना हो, सिर्फ उनकी यादों की खुशबू भर से ही जहनो दिल महक उठता है। तो उनकी यादों की को और भी तरोताजा करते हैं आपके अपने पसंदीदा गजलों के साथ कार्यक्रम आबशार में, जहां आज आपकी रात की हमसफर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
2: हमारी जनगणना हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मैं समय हूँ और मैं हरीश विमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: रात के इस गहरे खामोश सन्नाटे के बीच, बहुत खामोशी में, बहुत तन्हाई में, बेहजाद का ये एक शेर अक्सर याद आता है कि कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जाने किस कदर टूटा होगा कोई दिल मोहब्बत में, जाने किस कदर तन्हा होगा जो फरियाद कर उठा है आज किसी के वापस आने की। उदास राहों को ताक रही निगाहों में आंसू हैं और दिल में एक आस कि शायद उसके टूटे हुए दिल की आह सुन ले कोई।

हमारे सारे सपने, चाहते, ख्वाहिशें और हमारे सारे खुशियां। एक वक्त के बाद ये सारे अपने से जज्बात अचानक से बदल जाते हैं। वक्त के साथ मायने बदल लेते हैं ये सारे जज्बात, बेमानी हो जाते हैं और फिर बिखर गए इन लफ्जों के दायरे में बंधे हुए सारे रिश्ते, रह गई तो सिर्फ और सिर्फ एक लंबी तन्हाई, कुछ पुराने लम्हों की यादें और बहुत सारी बेचैनी।

8:42 हो चुके हैं और घड़ी की सुइयां फिलहाल हमें इशारा कर चुकी हैं कि बस कुछ ही मिनटों के बाद आपकी रात की हम सफर अनामिका का इस कार्यक्रम आबशार से जाने का वक्त हो जाएगा। लेकिन आपको भी कहीं नहीं जाना है। एक न्यूज ब्रेक के बाद हम जल्दी यानी 9 बजे फिर मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और

0: सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: दिने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थी

0: क्यों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food

0: their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: अब कहते हैं नमस्ते सुल्तान साहब, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग। और कहते हैं कहाँ थी आप? अब भाई हम हमारे पास बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं कभी कभी, तो चलिए इस बारे में कभी आराम से बात होगी। और थैंक यू आपकी मेल के लिए कि आप हमें इतना याद करते हैं और प्रोग्राम को इतनी सारी मोहब्बत देते हैं। और क्या बात है, बहुत सारी तारीफ लिखी है सुल्तान साहब ने, तो थैंक यू सो मच सुल्तान साहब। और ऐसे सुनते रहिए FM रेनबो, जो है आप सबके दिल की धड़कन। और इसी के साथ ही साथ सुल्तान साहब के साथ ही साथ रामराज जी ने हमें मैसेज किया है गणेश भगवान के नाम के साथ, और कहते हैं हमें जिला राय बरेली से, और कहते हैं हमें रामराज जी, राजभानु शंकर भैया, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, पप्पू जी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, हमारी तरफ से अनामिका बिटिया, क्या बात है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपकी इज्जत अफजाई के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और भाई इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, तो रामराज जी ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपने हमें मेल किया, प्रोग्राम को इतनी सारी मोहब्बत देते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन टाइम बीतता जा रहा है और फिलहाल बहुत सारे लोग इस इंतजार में होंगे कि हम वापस से कब थिरकेंगे, तो थिरकना बिल्कुल भी नहीं बंद होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस अगले गाने की तरफ, आप गेस करते रहिए, हम आपको थिरका के ही मानेंगे।

हाँ जी, अब आपके प्रिया घर आए हो या ना हो, अगर नहीं आए हो तो भाई आप अकेले थिरक लीजिए, क्योंकि जो अगला गाना आने वाला है उसने तो बिल्कुल आग लगा के रखी है डांस फ्लोर पे। क्या कहते हैं, सुनाया जाए थिरकाया जाए।

हाँ जी, 9:22 और होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया होगा सॉन्ग. क्या कहते हैं हमारी प्यारी जनता जनार्दन. तो भाई अब आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत से मेल के साथ. और अगला जो मेल है वो हम लेने वाले हैं सीमा पार बिल्कुल नहीं, भारत की सीमा पार से. जी हाँ, इतनी दूर से यानी नेपाल से हमें एक बड़ा खूबसूरत सा मेल आया है. और मेल

0: किया है रामकृष्ण ढकाल साहब ने, और हर बार की तरह बहुत सारा प्यार उन्होंने नेपाल से भेजा है और एक बड़े से मैसेज के साथ। तो रामकृष्ण साहब, अब यहाँ टाइम की थोड़ी सी कमी के कारण अगर हम मेल को थोड़ा सा छोटा करके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। तो रामकृष्ण जी लिखते हैं, भाई गुड इवनिंग आपको भी, और कहते हैं सभी धड़कनों को जोड़कर बना एक धड़कन लखनऊ रेनबो, यानी FM रेनबो, जोरदार महफिल, पॉप टाइम की लोकप्रियता, हमारी बड़ी तारीफ करता है। अच्छा, कुल मिला जुला के आपके हम मेल का जस्ट बताते हैं कि इन्हें ये प्रोग्राम इतना पसंद है कि ये सुनते हैं और इनके पूरे दिन की थकान उतर जाती है, और हमारी तो खैर ये तारीफ बहुत सारी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम इतना पसंद है कि आप हमसे नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच हमें इतनी दूर से इतना सुंदर सा मैसेज करने के लिए। इसी के साथ ही साथ चलिए जो अगला मेल हम लेने वाले हैं वो है विजयपाल यादव जी का। जी हाँ, विजयपाल यादव जी हमारे बहुत ही पुराने और रेगुलर लिसनर, जो हमारे हर प्रोग्राम को बहुत सारी मोहब्बत देते हैं। तो विजयपाल जी हमें कहते हैं अनामिका दीदी के साथ आज पॉप टाइम, जी हाँ हमारे साथ। तो विजयपाल जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, नमस्ते, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? और एक चार लाइन इन्होंने लिखी है, चलिए पढ़ देते हैं फटाफट। सुलगती धूप हो या सर्द रातों का समा, रेडियो ऑन होते ही बदल जाता है जहां, वो फरमाइशें, वो गाने, वो हवाओं का सफर, एक छोटे से डिब्बे में सिमटा है सारा आसमान। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही ना, ऐसा लगता नहीं है कि जैसे इस पार और उस पार, रेडियो के इस पार मैं और रेडियो के उस पार आप, आमने सामने बैठ के बात करें, बताइए सही कहती हूँ या नहीं। तो भाई कहते हैं FM रेनबो जिंदाबाद, बिल्कुल आपके दिल की धड़कन जिंदाबाद, और कहते हैं कि आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, और थैंक यू सो मच, आपको आबशार बहुत अच्छा लगा और गजलें आपको बहुत पसंद आई, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप हमें लिखते हैं जिला खीरी से बहुत सारी मोहब्बत के साथ, थैंक यू सो मच हमें इतना सुंदर सा मैसेज करने के लिए। और इसी के साथ ही साथ मेहर अरोड़ा जी हमें लिखते हैं, ममता अरोड़ा जी के साथ, कीर्ति जी के साथ, भूमिका अरोड़ा जी के साथ, श्री गंगानगर राजस्थान से, क्या बात है, इतनी दूर से आप हमें इतनी मोहब्बत भरे मेल करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और लेकिन ये जो आपने फरमाइशी गाना लिखा है मेहर साहब, सॉरी टू से ये प्रोग्राम फरमाइशी नहीं है, हम बहुत सारी बातें करते हैं इसमें, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके एंटरटेनमेंट में कोई कोर कसर होती है? नहीं ना, तो नहीं होती है, तो फिर भाई एंजॉय करिए प्रोग्राम और अपनों के साथ अपने घर के फ्लोर को बना लीजिए डांस फ्लोर। इसी के साथ ही साथ अंसारी शहनूर जी हमें मेल करते हैं और कहते हैं अंसारी साहब ये पॉप टाइम है, रेनबो कैफे आज नहीं है, और कहते हैं आदाब, आपको भी आदाब, गुड इवनिंग, और कहते हैं कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है और आप डेली सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और आप हमें लिखते हैं बरेली से, आपने बहुत सारे नाम लिखे हैं साथ में, शाहरून, नूर अंसारी, फरियाद अंसारी, शकील अंसारी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई चलिए ये मेल्स का सिलसिला तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि इतनी मोहब्बत से भाई आपने मेल लिखा है, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक बार फिर से आपके थिरकने का, और आपको थिरकाने से पहले चलिए बताते चलते हैं कि हमारी मेल ID है fmakashwadilakhnau@gmail.com। तो दिल में छुपी हो कोई बात तो कह डालिए आप, फिलहाल गाना एंजॉय करिए आप।
1: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है,
0: हम भी यही बात कह रहे हैं, आ जाइए।

जी, 9:33 और मन का मंत्र सीखे या ना सीखे, डांस जरूर सीख जाएंगे इस प्रोग्राम में आप। हरी बार बताते चलते हैं, फिलहाल आप हैं अपनी रात की हमसफर अनामिका के साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम यानी पॉप टाइम में। और हमारी मेल आईडी है कुछ कहने कुछ सुनने के लिए fmakashwani@gmail.com। और इसी के साथ ही साथ अब चलिए ले लेते हैं अगला मेल, वरना आपने हमें इतनी मोहब्बत से मेल किया, कहेंगे मेल नहीं पढ़ती बाकी सारी बात करती है। तो चलिए भाई, किसी ने बड़ी शिकायत के साथ एक मेल किया है। इंद्रपाल मिश्रा जी कहते हैं कि फोन कभी नहीं लगता, शामिल कर लो मेल। और अरे बिल्कुल, आपने इतनी मोहब्बत से मेल किया है, हम शामिल कैसे नहीं करेंगे। आप हमें लिखते हैं सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा जी, तो आपकी शिकायत जायज है, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो फोन करते हैं तो अब वो इंगेज इंगेज टे टे टे टे करता होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, शिकायत शिकायत को दूर करिए, ये एक घंटे फुल चल करने आए हैं हम, एंजॉय करने एंजॉय करिए इंद्रपाल जी। और इसी के साथ ही जावेद अख्तर साहब हमें कहते हैं, नाम भूल गए हैं जावेद साहब आप हमारा, और आप हमें सीधा जेंडर भी आपने चेंज कर दिया, सो कैसे जावेद साहब। और जावेद साहब को प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और कहते हैं कि हम डेली सुनते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम को भर भर के इन्होंने प्यार दिया है, और बस थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना अपनी मोहब्बत अपना प्यार हमें देते रहिए। और इसी के साथ ही साथ अभी जो अगला मेल है वो है अशोक कुमार जी का। तो अशोक कुमार जी हमें कहते हैं गुड इवनिंग मैडम जी, आपको भी गुड इवनिंग सर जी। और कहते हैं हमें रायपुर उड़रा मितौली लखीमपुर खीरी से, और कहते हैं भाई प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। और कहते हैं सॉन्ग्स कमाल लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो बस आपके लिए ही तो ये बहुत बढ़िया सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो आप सुनिए एंजॉय करिए। और बस इसी तरीके से मन का मंत्र सीख के डांस फ्लोर को हिला दीजिए। और इसी के साथ ही बैनेट कुमार हमें मैसेज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने नाम की स्पेलिंग जैसी लिखी है, इनका हिंदी में नाम दूसरा है। विनीत जी नाम की स्पेलिंग सही करिए मेल आईडी पे। विनीत जी हमें लिखते हैं अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, और कहते हैं बहुत सारी तारीफ के साथ हमारी कि आपको भी गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच। अगर आपको प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा थैंक यू सो मच, और गाने आपको अच्छे लगे इसके लिए भी थैंक यू सो मच। अब देखिए शुक्रिया ही निकलेगा हमारे मुंह से। और कहते हैं कि मेरे दोस्त ओमकार सीतापुर से, आजाद सिमरी शमा परवीन अंसारी सीतापुर, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से, सुरभी सीतापुर से, गुलफशा सिद्दीकी, संदीला ममता हरदोई, संजू संजय, संतोष मौर्य हरदोई से। अच्छा, आप सबको प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं, तो थैंक यू सो मच इंद्रपाल जी, इंद्रपाल जी थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमें मगर अब की बार आपने शिकायत नहीं की है, तो क्या बात है, आप इतना खूबसूरत मेल कहते हैं, आपके आने से लिसनर्स में खुशी की लहर आ गई। थैंक यू सो मच सीतापुर से इंद्रपाल जी हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही कहते हैं स्मार्ट आइडिया विद सुनील यादव, कहते हैं हेलो मैडम जी, मैं सुनील यादव सुल्तानपुरी आपका प्रोग्राम सुनने के लिए नया रेडियो लाया हूँ। क्या बात है सुनील जी, थैंक यू, मुझे आकाशवाणी से मोहब्बत तो थी ही। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हैं, हम ऐसे खुले आम नहीं बोल सकते, तो थैंक यू सुनील जी। कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया आपका, तो बिल्कुल अभी हम आपका दिल लॉन गार्डन करने वाले हैं, तो बस एक बार फिर से थिरकने के लिए तैयार सुनील जी, तो वादे के मुताबिक आइए चलिए ले चलते आपको एक बार फिर से डांस फ्लोर पे, क्योंकि अब गाना आ रहा है कुछ खास।

हाँ जी, तो क्या बोलती पब्लिक? तो हमें पता है, हमारी प्यारी सी जो ये जनता है, हमारे प्यारे से ये जो लिसनर्स हैं, जो हमें डेली सुनते हैं और हमारे हर एक प्रोग्राम को भर भर के मोहब्बत पहुंचाते हैं अपने मेल्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने फोन कॉल्स के थ्रू. वो अभी भी लगातार मेल्स कर रहे हैं, हमें मैसेजेस कर रहे हैं और मेल्स की बिल्कुल झड़ी लग गई है सामने हमारे हमारी स्क्रीन पे. और आपको ये इतनी सारी मोहब्बत देख के हम कभी भावुक भी होते हैं भाई. हम क्या बताएं, हम भाई टेंडेंसी है इंसानों वाली, तो हम भावुक भी हो जाते हैं. इतनी सारी मोहब्बत और इतने सारे मेल्स, आपको प्रोग्राम इतना पसंद आ रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच हमारी प्यारी जनता. तो भाई 9:45 हो चुके हैं और जल्दी जल्दी बाकी बच्चे सारे मेल्स ले लेते हैं. और मेल्स मैं अब शॉर्ट में अगर लूंगी ना, तो प्लीज आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्ती का तकाजा है एक दूसरे की बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि मेल्स करने में आप लोगों ने भी देरी की है थोड़ी थोड़ी. तो बाबू अंसारी साहब का मेल लेते हैं हम. बाराबंकी से हैं आप और आप हमें कहते हैं गुड इवनिंग मैडम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आपको भी गुड इवनिंग. आप कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच. आदित्य कुमार दुबे जी हमें कहते हैं मिर्जापुर से, और कहते हैं कि नमस्कार अनामिका जी, आप शार पॉप टाइम प्रोग्राम में आपके एंकरिंग अंदाज को बदलते हुए सुनना बहुत दिलचस्प लगा. रूहानियत से चुलबुली आवाज में बदलाव काबिले तारीफ. अरे थैंक यू, आपकी हंसी बड़ी अच्छी लगता है. अरे थैंक यू सो मच, आपका मेल भी बहुत अच्छा है और पॉप टाइम की शुरुआत शानदार है. थैंक यू सो मच. बिल्कुल हम शामिल क्यों नहीं करेंगे मेल, आपने इतने प्यार से हमें मेल किया है और आप हमें लिखते हैं जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से. थैंक यू सो मच अरविंद जी, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ ही रणधीर गुप्ता जी हमें कहते हैं रेडियो सखी जी नमस्कार, शुभ संध्या आपको भी, गुड इवनिंग, और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं. आप हमें लिखते हैं दिल्ली से रणधीर गुप्ता जी, बबीता जी, सत्यम गुप्ता जी, सुंदरम गुप्ता जी के साथ. और इसी के साथ ही साथ निर्मल गुप्ता जी कहते हैं कि आपकी आवाज ने जीवन को छुआ. अरे क्या बात है, क्या मतलब, इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट. प्रिय आरजे अनामिका जी नमस्कार, शायद आप मुझे नहीं जानती लेकिन आपकी आवाज मेरे जीवन का एक ऐसा. अच्छा, आपने बहुत सर लंबा सा मैसेज किया है सर, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि दोस्त हैं हम, दोस्ती का तकाजा है बुरा नहीं मानने का. और आप हमें लिखते हैं शॉर्ट में बताती हूँ कि आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया. तो आप हमें लिखते हैं लखीमपुर से, थैंक यू सो मच निर्मल जी. आकाश लोधी जी मलिहाबाद से हमें लिखते हैं प्रोग्राम एक नंबर, आपको भी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच इतना सारा, इतनी सारी मोहब्बत के लिए. आप हमें लिखते हैं अजीत लोधी जी के साथ, अर्जुन, करण जी और शिवम जी के साथ, थैंक यू आकाश जी. सिद्धार्थ गोंडानी जी हमें लिखते हैं कहां से अमरावती से, महाराष्ट्र से, इतनी दूर से आप हमें इतना खूबसूरत सा मेल कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच. इन्होंने प्रणय जी, प्रतिभा जी, हीरामन, अर्चना ताई, सिद्धार्थ जी के साथ लिखा है हमें, प्रोग्राम मैंने बहुत पसंद आ रहा है. और इसी के साथ ही साथ जितेंद्र नामदेव जी भी हमें लिखते हैं कहां से, शहडोल एमपी से, और कहते हैं कार्यक्रम क्या बात, मजा आ गया बिल्कुल, दिन भर की सारी थकान वकान गायब. नंदन जी महानगरी मुंबई से, नंदन जी हमें लिखते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कहां चली जाती है, बहुत दिन के बाद आती है नंदन जी, कभी फुर्सत में जरूर बताएंगे. और कहते हैं हमें कि प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और फिलहाल आप हमें लिख रहे हैं मुंबई से, थैंक यू सो मच नंदन जी. इसी के साथ ही रेनू जी, रेनू देवी जी हमें कहती है प्रोग्राम टॉप टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ एंजॉय करिए बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा था अपने घर के फ्लोर को बना लीजिए डांस फ्लोर. और आप हमें लिखती है उन्नाव से. तो अभी हमारे पास बहुत सारे मेल्स हैं, बहुत सारी मोहब्बत है आपकी, तो बात करेंगे अभी आगे इसके बारे में, लेकिन

हाँ जी, अब वो गाना जो कर रहा है ट्रेंड आपके दिलों पे, तो चलिए एक बार फिर से आपको थिरकाते हैं डांस फ्लोर पे वाव के साथ।

हाँ जी, हमारी प्यारी जनता, जनता जनार्दन खुश हो गई है। जनता जनार्दन, ये तो मुझे पता चल गया है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को इतना पसंद करने के लिए। और आज फिलहाल प्रोग्राम का बस आखिरी एक दो गाना और होगा, क्योंकि लेने हैं आपके बहुत सारे मेल्स, इतनी सारी जो मोहब्बत आई है। तो चलिए अगला मेल लेते हैं। अगला मेल हम ले रहे हैं अंशुमान ठाकुर साहब का, और लिखते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंशुमान जी, एफएम रेनबो, आई होप यू have a beautiful evening ahead. Yes, I just wanted to take a moment to share something from my heart. Achha, thank you for being the wonderful radio station you are, as you are. And I share this poem with you. I just want to express my gratitude for your presence. And अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर सा मैसेज इन्होंने किया है। थैंक यू सो मच अंशुमन। और कहते हैं एक किसी को उन्होंने डेडिकेट किया एक पूरा पोएम, और कहते हैं देखो कितना बेचारा पागल दर बदर भटकता है, बेसहारा पागल। एक बार गो आया तरस मेरी हालत, फिर उन्होंने फिर कहा दोबारा पागल, अभी ना तक पैर पानी की सतह पे। और अच्छा, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी ना इसको, क्योंकि टाइम कम है और भी बहुत सारे मेल्स लेने हैं। तो दोस्ती का तकाजा है बुरा नहीं मानने का। और कहते हैं थैंक यू सो मच, और जिसे आपने डेडिकेट किया है, जिसके लिए आपने कहा है, हमने उस तक आपका ये मैसेज बिल्कुल पहुंचा दिया होगा। तो अंशुमन जी, आपने एड्रेस अपना नहीं लिखा, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत सा मेल हमें किया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही साथ ये जो अगला मेल है राज स्टूडियो, स्टूडियो क्यों डाला है आपने राज यदुवंशी जी, हमें लिखते हैं अमेठी से, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हमारी प्यारी अमन संडीला से आज लेट हो गई करने में मेल, और कहती हैं कि भाई बहुत दिन के बाद मिले, बिल्कुल इतनी मुद्दत बाद मिले हैं तो थोड़ी बहुत शिकवा शिकायत होती है हमें पता है, लेकिन ठीक है, आप आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, और इतनी मोहब्बत के लिए थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट। एंड इसी के साथ ही हरदयाल जी, डॉक्टर सुमित कुमार, आकाश लोधी मलिहाबाद से, शिवम शुक्ला जी श्रावस्ती से, और इसी के साथ ही साथ विनीता जी, विनीता जी हमें लिखती हैं, बड़ा सा मैसेज है विनीता जी, आज के लिए माफी, और अगली बार आपका मेल हम पूरा पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। आप हमें गोसाईगंज लखनऊ से लिखती हैं। तेज बहादुर यादव जी, रोशनी, हमारी प्यारी रोशनी भी हमें मेल कर रही हैं। रोशनी ने थोड़ा लेट कर दिया मेल करने में, कोई बात नहीं रोशनी जी, आपकी शिकायत जायज है, लेकिन हम आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी, बहुत सारी। और इसी के साथ ही साथ तेज बहादुर यादव जी, सतीश कुमार जी, हरदयाल सिंह जी, मोनू जी, मोनू जी थैंक यू सो मच मेल करने के लिए, और आप सभी को एक बार थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम बहुत पसंद आया आपको, आया होगा आपको। तो चलिए एक बार फिर से चम्मा चम्मा पे एक बार फिर से कर लेते हैं एक बार फिर से डांस, और बना देते हैं अपने घर के फ्लोर को डांस फ्लोर, और मिलते हैं इस गाने के बाद कहाँ, अपने रात की हम सफर यानी अनामिका के साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में। तो जाइए जाइएगा ना, स्टे ट्यून्ड।

0: 100.7 FM रेनबो धड़कन
1: कोई नहीं आएगा।
2: नमस्कार, रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते और विशेष कार्यबल एटीएस की संयुक्त जांच में यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि 4 आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसमें महकब निवासी सहारनपुर, गगनदीर उर्फ गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर और मुशर्रफ निवासी हरिद्वार शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और संवेदनशील स्थलों की निगरानी, युवाओं की भर्ती और आतंकवादी एवं विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। बकरीद की पूर्व संध्या पर रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में शहर के मिश्रित इलाकों में रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में पैरा मिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने लोगों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से पैदल मार्च किया और आम जन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे बकरीद का त्यौहार आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। कन्नौज जिले में आज जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कार्यों में जनपद ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश स्तर पर 8वीं रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए शेष कार्यों की भी पूर्ण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंधी महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है। परिषद के अनुसार प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा यूपी जेईई पी 2026 का आयोजन 2 जून 2026 से 9 जून 2026 तक किया जाएगा। परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 4 बजे से 6:30 बजे तक संचालित की जाएगी। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए एफएम रेनबो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो

0: की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आदाब। एफएम रेनबो 100.7 पर अब वक्त हो चला है जज्बातों के पन्नों को पलटने का। और आज की रात मैं हूं आपके हम सफर, आपकी रात की हम सफर, और आप हैं अपनी सुनहरी यादों के खूबसूरत से सफर पर, यानी कार्यक्रम रजनीगंधा सुन रहे हैं आप। दिन भर हम दुनिया से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन रात वो वक्त है जब हम अपने आप से बातें करते हैं, खुद से गुफ्तगू करते हैं। जब सड़कों का शोर थम जाया करता है तो इस दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। आज की रात भी कुछ ऐसी ही कहानियों और पुराने नगमों के नाम हैं, जो रूह को सुकून भी देते हैं और आंखों को नम भी कर जाते हैं।

मौला गालिब ने कहा है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। जी हां, ऐसा अमूमन सबके साथ होता है। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत में होते हैं तो उनकी यादों में ना तो दिन का पता होता है ना रात की खबर, और इसी मोहब्बत में न जाने कितने साधारण लोग, इसी प्यार में न जाने कितने ऑर्डिनरी लोग, कितने साधारण लोग शायर हो गए, कवि हो गए। तो अगर आपको अपने महबूब से कुछ कहना हो, उन पे कुछ लिखना हो, तो क्या लिखेंगे?

शायद ये कि तुम्हें कभी पूरा लिखूं फिर कभी अधूरा, मैं रातों में बैठकर तुम्हें सवेरा लिखूं, मैं जब भी लिखूं बस इतना लिखूं, खुद को तेरा और तुझको मेरा लिखूं।

आपको पता है, कभी कभी एक अजनबी आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। हम लाइफ में सब कुछ प्लान करके चलते हैं, लेकिन उस खास इंसान से बिना किसी प्लानिंग के आप लाइफ में कहीं ना कहीं जाके टकरा ही जाते हैं। ना उससे मिलने की कोई प्लानिंग थी, ना प्यार करने का कोई इरादा, लेकिन उसकी आदत ऐसी लगती है कि हमारी खुद की जिंदगी, हमारी खुद की जिंदगी की हर खुशी उनसे जुड़ जाती है। हालत ये होती है कि दिन अच्छा हो या बुरा, सबसे पहले उनका ही ख्याल आता है, उनकी आवाज, उनकी हंसी, और उनका सिर्फ इतना कहना कि अपना ख्याल रखना दिल को सुकून देता है। और फिर धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि मोहब्बत सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, आकर्षण नहीं, बल्कि मोहब्बत तो वो है जब आप किसी के साथ सिर्फ आज नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन करने लगते हैं, जहां दिल ये नहीं सोचता कि कब तक साथ रहेगा, बल्कि ये सोचता है कि काश हर जन्म में यही इंसान मिले। क्योंकि कुछ लोगों से सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, उनके बिना हमारी पूरी की पूरी जिंदगी ही अधूरी लगने लगती है।

ये अजीब सी बात है ना कि हम लड़ते भी उसी से हैं जिसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। छोटी छोटी बातों पर चुप हो जाना, गुस्सा दिखाना, लेकिन अंदर से बस उसी का इंतजार होता है। हम बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच पूछिए तो सबसे ज्यादा फर्क उनसे रूठ जाने पर ही पड़ता है। क्योंकि ये लड़ाई नफरत नहीं होती, बल्कि डर होता है कि कहीं वो सच में दूर ना हो जाए। और ये सच है कि दिन के आखिर में ये दिल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ढूंढता है जिनसे हम लड़ भले ही लें, झगड़ा भले ही कर लें, लेकिन हमारी मोहब्बत से लेके दुआओं तक में

ज्यादा समझा जा सके, जो आपकी खामोशी में भी आपको सुन सके, आपकी सारी बातें पढ़ सके, आपका मन पढ़ सके और आपके हर दर्द हर तकलीफ में आपका सहारा बने, जो आपको बदलने की कोशिश ना करे बल्कि आप जो हो जैसे हो बिल्कुल वैसे ही अपना ले, वैसे ही एक्सेप्ट करे। प्यार वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ हो, बल्कि प्यार तो वो है जो मुश्किलों में भी आपका साथ कभी ना छोड़े, जहां भरोसा हो, सम्मान हो और एक दूसरे में सुकून मिले। क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है जो दिल को शांति दे और जिंदगी को खूबसूरत बना दे।

हर इंसान की लाइफ में शायद प्यार की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्यार ऐसा होना चाहिए जो शब्दों से कम और एहसासों से

नमस्कार, रात्रि के 11 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। ज्ञातत्व है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ ही यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को लेकर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में तीसरे स्थान से प्रथम स्थान तक पहुंचाने की रणनीति पर